दोस्तों, अगर किसी दिन सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं हुआ तो खुद को दोष मत दीजिए। हर दिन जीतने के लिए नहीं होता, कुछ दिन सीखने के लिए भी होते हैं, और यही सीख कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं।

दोस्तों, आपको पता है कि रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? वो ये कि उन्हें महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक फोन, एक मुलाकात या सिर्फ मुस्कुरा के इतना कह देना, आप अपना ख्याल रखिएगा, दिल जीत लेता है। और आज आप किसी अपने को याद कीजिए, वो भी बिना किसी वजह के।

दोस्तों, जीवन की दौड़ में दूसरों से आगे निकलना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आप कल वाले खुद से बेहतर बने। धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत, थक जाइए लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि सूरज भी हर शाम ढलता है और फिर अगली सुबह पूरी रोशनी के साथ लौट आता है।

दोस्तों, याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि जीने का तरीका है। और अब एक आखिरी बात, अपने सपनों पर भरोसा रखिए, अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए और खुद से प्यार करना कभी मत भूलिए। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।

0: స్టూడియో క్లాక్లో టైం 5:59 అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు హిందీలో న్యూస్ వింటారు, ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్లో న్యూస్ వింటారు.
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है. इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा. इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी. कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा. प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा. इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे. रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

0: जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथे से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 771 मिलियन डॉलर से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये 679 मिलियन डॉलर था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारे पानी का रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Subhadra Ramachandran. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
2: This is one of first FTA of its kind, which establishes a future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
1: More from our correspondent.
3: This agreement has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The simultaneous enforcement of the CETA and the DCC will open up significant new opportunities for India's export. Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariff across several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products over

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 टू 3 पीएम एवरी डे ऑन एफएम रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

नमस्ते, हेलो, आदाब दोस्तों। जी हाँ, मैं आ गया हूँ, आपका दोस्त आरजे जेडी यानी जयदीप। और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। बहुत बहुत शुभ प्रभात मेरे सभी दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ आपकी सुबह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू हुई होगी। एंड अब तक आपने सुना 10 बजे से लेकर 11 बजे तक एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम, जहाँ पर हमने बात किया है सी सुदर्शन रेड्डी जी के साथ। और आशा करते हैं कि आप लोग अपने सवाल और डाउट्स को क्लियर किए होंगे। तो दोस्तों, बिना बिना लेट किए चलिए हम अपना म्यूजिकल जर्नी और बहुत सारी बातों के साथ इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले सुनिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गाना।

दोस्तों, आज की तारीख है 15 जुलाई और आज दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। आज के ज़माने में सिर्फ डिग्री ही सब कुछ नहीं होती। जी हाँ, डिग्री ही सब कुछ नहीं होती, एक नया स्किल भी आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। हो सकता है किसी को फोटोग्राफी का शौक़ हो, किसी को कोडिंग पसंद हो, और किसी को कुकिंग में कमाल दिखाना हो, या कोई पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हो। हर स्किल में अपना पहचान होता है। एक बात याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, लेकिन स्किल और प्रैक्टिस, जी स्किल्स और प्रैक्टिस ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। और स्किल सीखने के लिए कोई एज नहीं होता है। जी, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशन हो, या नहीं तो फिर रिटायर्ड भी हो चुके हो, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका वैसे ही हमको मौके देते ही रहता है। हमको बस उसे अपनाना होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज आपको सिर्फ एक नया स्किल बिल्कुल फ्री में सीखने का मौका मिले, तो आप सीखना कौन सा स्किल सीखना पसंद करोगे? सोचिए ज़रूर। हो सकता है आपका जवाब किसी और लिजनर्स को भी इंस्पायर करे, और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको अपना व्हाट्सअप का नंबर बता दूँ, जहाँ पर आप हमें इंस्टेंटली मैसेज कर सकते हो और मैं सारे मैसेजेस पढ़ूँगा। वो है 4023234822। तो चलिए, अभी हम चलते हैं हमारे म्यूज़िकल जर्नी की तरफ। अब सुनते हैं हम गाना आ भी जा।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे FM रेनबो 101.9। कितना खूबसूरत गाना था अभी जा, सुनिधि और लकी अली का, बहुत ही खूबसूरत नगमा। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। आज 15 जुलाई का एक और खास पहलू भी है, वो है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। जी हाँ, इसको सुनने पर लग रहा है कि ये कोर्ट कचहरी का मामला लग रहा है लेकिन जी ये कोर्ट कचहरी का ही है, लेकिन जस्टिस का यानी कि न्याय का दिन। अब नाम सुनते ही शायद लगे कि ये सिर्फ कोर्ट्स या लॉयर्स से जुड़ा हुआ दिन है, लेकिन असल में इसका मतलब हम सब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जस्टिस जस्टिस सिर्फ कानून की किताब में नहीं होता, बल्कि रोज की जिंदगी में भी होता है। किसी के साथ ईमानदारी से पेश आना,

दोस्तों, हमें मैसेज किए हैं गणेश जी ने, और वो मैसेज कर रहे हैं बरकतपुरा से, और ये बोलते हैं, गुड मॉर्निंग जेडी जी, बहुत अच्छे अच्छे गानों से शुरुआत किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्किल्स के बारे में, जी हाँ, हमारा पहला टॉपिक जो स्किल्स के बारे में था, इन्होंने इसके बारे में एक मैसेज किया है। स्किल्स के बारे में कहूँ तो मुझे ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है। ओ हो, ट्रेडिंग, भाई साहब, सही है। मेरा जॉब पूरा होने के बाद घर आके रात में 11 से लेकर 2 तक सीखता हूँ। ये होती है एक्चुअल प्रैक्टिस और स्किल्स को अपना बूस्ट करना। क्योंकि दोस्तों, ये गणेश जी कह रहे हैं कि अपना जॉब भी करते हैं और साथ में ये स्किल्स भी सीखते हैं, और वो स्किल है ट्रेडिंग का। चाहे आप कोई भी स्किल सीखो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, या नहीं तो सिंगिंग, या नहीं तो कुकिंग, चाहे कुछ भी हो, इसमें ना आपको वक्त देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, स्किल्स यानी कि एक शुरुआत है, लेकिन आपको प्रैक्टिस से ही इसमें मंजिल मिल सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं, और आज एक और दिन भी है, वो है सोशल मीडिया गिविंग डे। जी हाँ, सोशल मीडिया गिविंग डे, यानी कि भाई साहब, मैं हर बार की तरह यहाँ पर सोशल मीडिया के कॉन्स बोलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर प्रोस भी बोलता हूँ। तो जी हाँ, सोशल मीडिया गिविंग डे मनाया जाता है 15 जुलाई को, और आज के डिजिटल ज़माने में सोशल मीडिया सिर्फ रील्स और एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है। कभी किसी पेशेंट के लिए ब्लड डोनर ढूंढना हो, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद करनी हो, फ्लड या डिजास्टर रिलीफ के लिए अवेयरनेस फैलानी हो, या आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो और कुछ घटना घट गट रही हो, और उस समय भी में भी सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पर आप लाइव जा सकते हो। और इसने, इतना ही नहीं, बहुत सारी महिलाओं को भी इसने बहुत बहुत बहुत मदद किया। क्योंकि सोशल मीडिया में एक ऑप्शन ये भी रहता है जहाँ पर आप अपना लोकेशन भी शेयर होता है आपका। तो ऐसे सोशल मीडिया गिविंग डे, यानी कि जो सोशल मीडिया हमको जो अच्छी चीज़ें दिया है उनको हम गिन रहे हैं आज के दिन। तो ये, या मतलब, इतना उपयोगी है सोशल मीडिया, इतना उपयोगी भी है सोशल मीडिया, अगर मैं कहना चाहूँ तो। सो सोशल मीडिया ने हज़ारों जिंदगियों को बदला है। तो आज का छोटा सा चैलेंज ये है, आज अपनी सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक पोस्ट किसी का दिन नहीं, बल्कि किसी की ज़िंदगी बदल दे। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं लोग सोशल मीडिया में, अगर किसी को ब्लड डोनर की ज़रूरत है, किसी को खून की ज़रूरत है, तो वो आजकल लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, और सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी फैल जाता है, हम उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं, जहाँ पर हमको लोग तुरंत कॉल कर देते हैं, बहुत, मतलब, अलग अलग जगह से। तो जी हाँ, इतना बहुत ही उपयोगी है सोशल मीडिया। तो जी, हम और भी बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में, पर्टिकुलरली, जी, आज हम प्रोज भी बात करेंगे और ज़रूर कॉन्स भी बात करेंगे, ताकि आप सभी लोग भी इसको जान सके, समझ सके। और अगर आप अनअवेयर हो कि आप बिना जाने ही, अनजाने में आप उसको, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो उससे पहले चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना। जी हाँ, अभी हम, इससे पहले तो सुना था गाना शुगर लगा ले, बहुत ही मस्त था, रघु दीक्षित जी का। अभी सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी टाइटान।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी। तो जी, इज सोशल मीडिया ए बून और ए बेन? यानी कि सोशल मीडिया जो है हमारे लिए एक वर है या नहीं तो फिर श्राप। जी हाँ, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। आज एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, सोशल मीडिया वरदान है या फिर अभिशाप? सोचिए जरा, आज हम घर घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने की खबर कुछ कुछ ही सेकंड्स में जान सकते हैं। दूर बैठे अपनों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। और कभी-कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद भी सिर्फ एक पोस्ट शेयर करके हम कर सकते हैं। लेकिन हर सीख के दो पहलू होते हैं ज़रूर। जी हाँ, तो हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। कभी कभी हम इतना बिजी हो जाते हैं ऑनलाइन दुनिया में कि सामने बैठे अपने लोगों को ही वक्त देना भूल जाते हैं। लाइक्स और फॉलोअर्स के रेस में हम असली मुस्कान और सुकून खो चुके हैं। तो शायद सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि उसका इस्तेमाल किस तरह, जी हाँ किस तरह करते हैं हम। क्योंकि अब जब अब सवाल आपसे है ही है, तो आज आपको पूरा 24 घंटे के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना पड़े, तो क्या आप रह पाओगे? सोचिए एक बार, हम इतना एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया को, और सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होगी? तो जी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार कोशिश कीजिए, अगर 24 घंटे ना सही, एटलीस्ट 12 घंटे कोशिश कीजिए कि आप सोशल मीडिया यूज़ ना करें। दोस्तों, हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स होती है उनमें आजकल एक नया फीचर भी है, जहाँ पर हमें मिलता है कि सोशल मीडिया यानी तो कौन सा भी एप्लीकेशन को हम लोग कुछ मतलब मिनट्स तक हम लोग लिमिट रख सकते हैं। कि हाँ, हम लोगों ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिया और उसमें सेटिंग्स में गए और वहाँ पर ढूंढा ये फीचर, वहाँ पर हमको वहाँ ऑप्शन मिलता है कि ये पर्टिकुलर मैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म या ये एप्लीकेशन मैं सिर्फ दिन के 30 मिनट ही चलाऊंगा। तो ऐसा वो 30 मिनट के बाद आपको नोटिफिकेशन देगा और 30 मिनट के बाद अपने आप वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। जी, तो आपको अगर ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, तो आप एप्लीकेशन फिर से खोल सकते हैं दोबारा कुछ सेटिंग्स करके। लेकिन वो आपको बहुत ही अच्छा समझाएगा, सिखाएगा और आपको सतर्क करेगा कि आपका टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा ओवर लिमिट हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देखिए आपके मोबाइल्स में अगर ये फीचर हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो ढूंढिए एप्लीकेशंस में, ये भी मिल जाएगा। नए नए फीचर्स तो हमेशा आते ही रहते हैं मार्केट में। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना, मैंने खुद को।

एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। सुबह उठते ही सबसे पहले काम आप क्या करते हैं? पानी पीते हैं या फिर सीधा मोबाइल में घुस जाते हैं नोटिफिकेशंस के मामले में? सच कहूँ तो हम में बहुत से लोग सुबह अलार्म से उठते हैं और मोबाइल स्क्रीन्स में घुस जाते हैं। तो इसीलिए एक छोटा ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए। सुबह उठते ही कोशिश कीजिए कि आप 1 घंटे तक अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे और सुबह उठ के आप व्यायाम करेंगे, पानी पियेंगे और फ्रेश अप होंगे। उसके बाद जाकर 1 या 2 घंटे के बाद आप मोबाइल फ़ोन चलाएंगे। देखिए एक बार, 1 हफ्ता 10 दिन तक करके देखिए, फिर देखिए आपका डे कितना एक्टिव हो जाता है। क्योंकि हम उठते ही सारी हमें हम खुद के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम उठने के बाद नोटिफिकेशंस, यानी कि नोटिफिकेशंस वो होती है जो दूसरों से हमको जो मैसेजेस हो, या नहीं तो कोई किसी ने रील सेंड किया, किसी ने कॉमेंट किया, किसी ने लाइक किया, तो किसी और का मामले में हमको दर्शाता है। और सुबह उठते ही हम अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, फ़ोन को साइड में रखेंगे और खुद पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, थोड़ा सा आराम से हम मेडिटेशन करेंगे और अच्छे गाने सुनने में हम लोग अपना डे स्टार्ट करेंगे, फिर देखिए कि डे पूरा किस तरह से पॉजिटिव रहता है और किस तरह से एक्टिव रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को आसान भी बनाया है और काफ़ी हद तक बदला भी है। पहले हम सफ़र के मज़े मज़े लेते थे, सफ़र के टाइम हम लोग मज़े लेते थे। आज उसी सफ़र में फ़ोटोज़ और रील्स बनाने में ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। क्योंकि हम जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर वादियों और पहाड़ियों के पास गए, तो हम वहाँ पर उन वादियों पहाड़ियों और उन वहाँ उस महक और उस ताजगी भरी सांस को हम लेने के बजाय हम लोग फोटोज़, रील्स बनाने में, वीडियोस बनाने में, इसमें घुस जाते हैं। तो देखिए एक बार कितना हम लोगों में बदलाव आया है इन सोशल मीडिया मीडिया की वजह से। हम मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोटोज़ वीडियोस लेने नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को मेमोरीज इकट्ठे करने बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रायोरिटी, आप वक्त कहाँ पर ज़्यादा दे रहे हो, फ़ोटोज़ खींचने में या नहीं तो फिर वहाँ की जगह और वहाँ के मौसम, वहाँ के लोग, वहाँ का सब कुछ जो भी दृश्य है उसके मज़े लेने में। तो जी हाँ, ये यहाँ पर मैटर करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके बदले में बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया गलत है। ज़रूरत सिर्फ इतना है कि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, हमारी ज़िंदगी पर हावी नहीं होना चाहिए उस पर। तो आपने अपनी ज़िंदगी में सोशल मीडिया की वजह से सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव क्या देखा है? अगर आपको बताना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सोचिए और अपना विचार हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल एक और बेहतरीन गीत के साथ इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ FM रेनबो 101.9 रेनबो के साथ। जी, लाइफ है रंगीन।

वेलकम बैक टू एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। मैं हूं आपका दोस्त आरजे जेडी। दोस्तों, तो ठीक है, हम लोगों ने अभी तक बात किया था सोशल मीडिया गिविंग डे के बारे में कि किस तरह से सोशल मीडिया के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और साथ में ही जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं उसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया हमारे लाइफ के लिए एक श्राप के जैसा है, लेकिन वो एक वरदान जैसा है। डिपेंड करता है कि इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है वो, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और एआई जब से आ चुका है तो लोगों को इतना इतना आसान हो गया है, सब कुछ बहुत आसान हो गया है। कुछ भी मेल ड्राफ्ट करना है, एआई आ गया। कुछ भी फ़ोटो क्रिएट करना है, एआई आ गया। रील्स बनाना है, एआई आ गया। तो जी हाँ दोस्तों, एक हिसाब से हम देखा जाए इसके बारे में तो एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क पड़ेगा, लोगों की नौकरियों में भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन स्किल्स, जिस तरह आज वर्ल्ड स्किल यूथ स्किल्स डे है, मैं चाहता हूँ कि एआई के भी बहुत सारे स्किल्स हैं भाई साहब। आप ढूंढिए, आप एआई का ही मदद लीजिए और एआई के ही स्किल्स ढूंढिए, उसमें मिलेंगे आपको। और उसके कोर्सेस है, स्किल्स है, उसके द्वारा आपको नए जॉब्स, यानी कि जिस तरह से पुराने जॉब्स जा रहे हैं, नए जॉब्स भी आ रहे हैं। एआई अपने आप में ही कुछ नहीं कर सकता है, उसको चलाना पड़ता है, तो उसके लिए भी स्किल्स बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, तो ज़रूर एआई में ही सर्च कीजिएगा कि एआई के स्किल्स सीखने के लिए कैसे कैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं और कैसे कैसे सर्टिफिकेट्स हमको मिलते हैं और उसका उपयोग किस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अब एक अनोखा टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि नाम है डेजा वू। जी हाँ, बहुत ही अनोखा है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने शायद इसको पहली बार सुन रहा होगा, ये वाला वर्ड डेजा वू करके। तो दोस्तों, कभी आप किसी नए

जगह गए हो, किसी नए इंसान से मिले हो और अचानक दिल ने कहा है, अरे ये तो पहले भी हो चुका है। आपको ये सभी मैक्सिमम मैं तो सोचता हूँ कि हर किसी के साथ ये एक्सपीरियंस कभी ना कभी हो चुका होगा, बस उनको इसका नाम पता नहीं होगा। इसका नाम है, इसको बोला जाता है डेजा वू, और ये साइंस और बिलीफ्स का ही एक टॉपिक है। तो जी, तो जो ये एक बस एक ऐसी एहसास को कहता है डेजा वू, जो हमको ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। इसके बारे में कई तरह की बातें कही जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पिछले जन्म की यादें हो सकती है, या कुछ कहते हैं शायद भगवान या किस्मत हमें कोई इशारा दे रहा होता है, और कुछ लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स या टाइम लूप से भी जोड़ते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं, जो मैक्सिमम लोग सोचते हैं, जो साइंस में बिलीव करते हैं, वो लोग साइंस के नज़रिया से थोड़ा सा अलग देखते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक कभी-कभी हमारे दिमाग किसी बिल्कुल नए पल को या घटना से पहले देखने का ऐसा रजिस्टर कर देता है दिमाग में कि हाँ, मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ। ऐसा नहीं रहता है कि आप ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन अपना दिमाग ऐसा रजिस्टर कर देता है, जैसे कि बोलते हैं ना, एक ग्लिच हो, या नहीं तो फिर एक छोटा सा मिस्टेक बाय अपना ब्रेन। अभी आप अपना राय बताइए, आपको क्या लगता है, ये साइंस है या नहीं तो फिर कोई एक बिलीव है, ये कोई मैसेज है या नहीं तो फिर अपने दिमाग का कोई एक छोटा सा मिस्टेक। बस यानी यू नो कुछ सेकंड्स का ही होता है, लेकिन ये बस कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। तो दोस्तों, हम हमारा म्यूजिकल जर्नी आगे बढ़ाते हैं। हम आगे बात करेंगे एक और अनोखा और अजीब सी बात के बारे में, जो कि है, हम जब यौन करते हैं तो हम किसी को देखते हैं यौन करते हुए, यानी कि जमाई, और हमें भी आ जाता है यौनिंग। तो जी हाँ, हम इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम सुनते हैं एक अच्छे से खूबसूरत सा गाना।

भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरूआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
1: The Security Council has been ineffective.
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The India-UK Free Trade Agreement has come into force from today. To celebrate the occasion, the Union Ministry of Commerce and Industry is organising a nationwide programme covering all the states and UTs. The Directorate General of Foreign Trade, in collaboration with the Gems and Jewellery Export Promotion Council and Customs Authority and other stakeholders, will organise a flag-off programme at the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata this afternoon, in which export consignment will be sent to United Kingdom to commemorate the initiative.

वेलकम बैक दोस्तों, स्टूडियो में हो रहा है 12:11 और आप सुन रहे FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। चलिए जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि हम बात करेंगे एक बहुत ही अजीब सी टॉपिक के बारे में, जो है यॉनिंग, यानी कि जम्हाई लेना। तो दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि अगर कोई एक इंसान जम्हाई लेता है तो आसपास के लोगों को भी जमाई आने लगती है। और मेरे ख्याल से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों को शायद सुनते सुनते भी आ जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जमाई के बारे में सुनकर भी जमाई आ जाता है, क्योंकि हम मैंने अक्सर देखा है, मैंने खुद में भी नोटिस किया है। और साइंटिस्ट का यह मानना है कि हमारे दिमाग की एम्पथी, यानी दूसरों के इमोशंस और एक्शन से कनेक्ट होने की एक प्रक्रिया है, हो सकती है एक्चुअली। इसी वजह से यॉनिंग कंटेजियस लगता है। हालांकि इसका एग्जैक्ट रीजन पर आज भी रिसर्च चल रहा है। तो जरा बताइए, क्या मेरी जमाई वाली बात सुनते ही आपको भी जमाई आई होगी ना? और दोस्तों, एक ऐसे ही मेंटली रिलेटेड एक और टॉपिक है, जो कि दिमाग में गाना स्टक हो जाना। व्हाई डू सॉन्ग्स गेट स्टक इन आवर हेड्स? तो दोस्तों, अक्सर लोगों में देखा गया है, हम खुद में भी देखते हैं, हम हालांकि बाहर बताते नहीं हैं, लेकिन दिमाग में कभी कोई ना कोई गाना बजते रहता है। कभी ऐसा हुआ है, एक ही गाना सुनते हो और वो पूरा दिन दिमाग में घूमते रहता है? और कभी कभी कुछ लोगों के साथ पूरा हफ्ता भी वो गाना घूमते रहता है, चाहे आप ऑफिस में हो, किचन में हो, या ड्राइविंग कर रहे हो, या वो एक लाइन बार बार याद आते रहता है, वो एक म्यूजिक बार बार याद आते रहता है। अगर हाँ, तो फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। सो यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट द ओनली वन। साइंटिस्ट इसे ईयर वॉर्म कहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अपने कान में कीड़ा है, बल्कि जब किसी गाने की धुन बहुत कैची होती है, यानी कि बहुत ही मतलब पकड़ेलू होती है, तो उसके हिसाब से मतलब वो हमें बार बार दिमाग अपने आप में ही बजाते रहता है। क्योंकि एक एक ऐसा रहता है कि शायद एक इम्पल्स सेंड करता है, एक सेटिस्फैक्शन वाला, कि जैसे ही ये म्यूजिक सुना तो एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन जैसा लगता है, वो सिंकिंग वो बहुत सेटिस्फैक्शन लगता है, यानी तो वो लिरिक्स बहुत सेटिस्फैक्शन लगता है। तो कभी कभी कोई याद, कोई जगह या कोई खास इंसान भी किसी गाने से जुड़ जाता है, इस वजह से भी हमको याद आता है। तो और फिर ऐसा होता है कि कोशिश कीजिए, मैंने ये कहीं तो सोशल मीडिया में पढ़ा था कि आपके दिमाग से अगर किसी गाने को जबरदस्ती निकलवाना हो तो आप उस गाने को एक बार सुनिए और पूरा गाना गाइए। पता नहीं, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, शायद वो आप पे काम आए। अगर वो आप पर काम करता है तो मुझे आके बता देना व्हाट्सएप पे, मैं भी यहाँ पर अपने दोस्तों को शेयर कर दूंगा कि ये एक्चुअली वर्कआउट करता है, और मैं भी एक बार कोशिश करूंगा इसके बारे में। तो दोस्तों, अभी हम हमारे म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको बता दूं, ये जर्नी में मैं एक कहानी सुनाने वाला हूं, जैसे मैं पिछली बार भी मैंने सुनाई थी, और पिछली बार भी बहुत लोगों ने बहुत तारीफ की कहानी, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को, एंड आई होप इवन टुडे यू विल ऑल लव माई स्टोरी। और इस गाने के बाद हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं, तो आई होप आप सभी लोग एक्साइटेड हो। तो जी दोस्तों, चलिए अब सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना, लेकिन उससे पहले एक संदेश।

वेलकम बैक दोस्तों। तो जी हाँ, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। दोस्तों, मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और उस कहानी का नाम है वो आज भी दरवाजे पर बैठा है। दोस्तों, हर घर में एक दरवाज़ा होता है और हर दरवाज़े की एक आदत होती है। किसी किसी दरवाजे का किसी घर का दरवाज़ा बच्चों की आवाज़ से खुलती है, किसी की मेहमानों से, और कुछ दरवाज़े सिर्फ एक इंसान का इंतज़ार करता है। ये कहानी है रिटायर्ड स्कूल टीचर विश्वनाथ जी की। उनकी पत्नी को गुज़रे 10 साल हो चुके थे। एक बेटा है विदेश में। फ़ोन करता था लेकिन वक्त मिलने पर। घर में बस दो ही लोग रहते थे और वो है विश्वनाथ जी और शेरू जी। शेरू सड़क से उठाया हुआ एक भूरा सा कुत्ता है। तो दोस्तों, ना कोई नस्ल, ना कोई शान, लेकिन वफादार, जैसे भगवान ने फुर्सत से बनाया हो। हर शाम 5 बजे शेरू दरवाजे के पास बैठ जाता। विश्वनाथ जी मुस्कुराकर कहते, अरे पागल, किसका इंतजार करता है? शेरू बस पूंछ हिला देता जैसे उसे पता हो कोई आने वाला है। एक दिन विश्वनाथ जी को तेज बुखार आया। पड़ोसी हॉस्पिटल ले गए। शेरू दरवाजे से हिला ही नहीं। 2 दिन, 3 दिन, 4th दिन, ना खाना ना पानी, बस दरवाजे की तरफ देखना। मोहल्ले वाले कहते, इसे अंदर बांध दो, लेकिन शेरू हर बार रस्सी तोड़कर

रस्सी काट कर छुड़वा कर फिर उसी दरवाजे पर आ बैठता। और पांचवें दिन हॉस्पिटल से फोन आया। जी, उस दिन के बाद शेरू ने दरवाजे से नजर हटानी छोड़ी ही नहीं। दोस्तों, कभी-कभी इंतजार मोहब्बत से भी बड़ा होता है। मैं हूं आरजे जेडी। क्या विश्वनाथ जी लौट कर आए या शेरू किसी और का इंतजार कर रहा था? क्योंकि हॉस्पिटल से तो खबर आ गई थी, और वो खबर क्या है हम आगे बात करेंगे। लेकिन क्या शेरू विश्वनाथ जी का इंतजार कर रहा था या नहीं तो फिर किसी और का? इसका जवाब एक खूबसूरत सा गीत के बाद।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

दोस्तों, गीत खत्म हो गया लेकिन शेरू का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ। हॉस्पिटल से फोन आया था लेकिन मोहल्ले में किसी ने शेरू को कुछ नहीं बताया। शायद इसीलिए क्योंकि कुत्ते इंसान की जुबान नहीं समझते लेकिन दिल की खामोशी जरूर समझ लेते हैं। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस आई, घर के बाहर रुक गई। शेरू पहली बार दरवाजे से उठा। सबको लगा देखो अपने मालिक को पहचान गया, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला, शेरू धीरे से पीछे हट गया। उसने ना भौंका, ना दौड़ा, ना पूंछ हिलाया, बस जमीन पर बैठ गया, जैसे उसे सच मालूम ही ना हो। लेकिन उसे सब पता था। उस दिन विश्वनाथ जी की अंतिम संस्कार हो गया, सब लोग चले गए, बेटा भी। बेटा आया था अंतिम संस्कार करने के लिए लेकिन चला गया। 2 दिन बाद वापस विदेश चला गया था उसका बेटा और घर फिर से खाली हो गया, लेकिन शेरू नहीं गया। रोज शाम ठीक 5 बजे वो फिर उसी दरवाजे पर आ बैठता। मोहल्ले के शर्मा जी ने एक दिन पूछ ही लिया, अरे शेरू अब कौन आएगा? शेरू

आंखें उठाकर देखी, दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही हो। उस रात शर्मा जी पहली बार विश्वनाथ जी के कमरे में गए। अलमारी बंद थी, किताबें धूल से ढकी थी और तकिए के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखा था, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो शेरू को कह देना मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। वादा? कैसा वादा? और एक आदमी जो इस दुनिया में नहीं रहा, एक आदमी जो इस दुनिया में नहीं रहा, वो वादा निभाने की बात क्यों कर रहा है? मैं हूं आरजे जेडी। क्या था वो वादा? किस बात का इंतजार कर रहा था शेरू? और क्या सच में कुछ वादे मौत से भी बड़े होते हैं? इसका जवाब एक और खूबसूरत सा गीत के बाद।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न-ए-हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट।

वेलकम बैक दोस्तों। जी हाँ, वादा दोस्तों। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े राज बहुत छोटे लफ्जों में छुपे होते हैं। शर्मा जी ने डायरी का अगला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, शेरू, अगर किसी दिन मैं वापस ना आऊं तो दरवाजा छोड़ना मत। मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जिस दिन मेरा बेटा सच में मुझे याद करके इस घर में लौटेगा, उस दिन समझना मैं भी उसके साथ लौट आया और मेरा वादा पूरा होगा। शर्मा जी की आंखें भर आई। उन्हें तब समझ आया, शेरू विश्वनाथ जी का इंतजार नहीं कर रहा था, वो उनके वादे का पहरेदार कर रहा था। 3 साल बीत गए। शेरू को शर्मा जी कभी कभी आकर, यानी तो हर रोज थोड़ा बहुत खाना देकर जाते थे और पानी भी देकर जाते थे। 3 साल बाद जब 3 साल बीत गए, घर बंद रहा, दरवाजे पर बस धूल जमा होती थी और उस धूल के बीच शेरू के पंजों के निशान। हर शाम ठीक 5 बजे वही जगह, वही दरवाजा, वही इंतजार। एक दिन एक टैक्सी उस घर के सामने आकर रुकी। विदेश से विश्वनाथ जी का बेटा उतरा। इस बार घर बेचने के लिए नहीं, अपना घर वापस पाने के लिए। दरवाजा खोलने से पहले उसकी नजर शेरू पर पड़ी। अब शेरू की आंखें धुंधली हो चुकी थी, सांस धीमी थी, लेकिन जैसे ही उसने उस लड़के को देखा, वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। एक बार उसके पास आया, अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया और पहली बार 3 सालों में दरवाजे से मुड़कर घर के अंदर चला गया। 2 कदम, बस 2 कदम, फिर विश्वनाथ जी की पुरानी कुर्सी के पास शांत होकर लेट गया उसने। उसने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली, जैसे कह रहा हो, वादा पूरा हुआ। विश्वनाथ जी का बेटा जोर जोर से रोता रहा, शेरू के लिए नहीं, अपने लिए। उसे समझ आ गया था, उसके पिता ने आखिरी सांस तक उसका इंतजार नहीं छोड़ा और जिस वादे को एक बेटा निभा ना सका, उसे बेजुबान ने आखिरी सांस तक निभा दिया। दोस्त, इंसान मोहब्बत का इजहार कर देता है, लेकिन वफादारी कभी बोलती नहीं, सिर्फ इंतजार करती है। जी हाँ, कभी वफादारी बोलती नहीं है, बस इंतज़ार करती है। और शायद इस दुनिया का सबसे भारी बोझ मौत नहीं, किसी का इंतज़ार होता है। मैं हूँ RJ JD। अगर आज घर लौटते वक्त

कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो तो उसे इंतज़ार मत करवाइए, क्योंकि कुछ दरवाज़े बंद होने के बाद खुलती नहीं। और अगर आपका कोई प्रिय या आपका कोई चहेता कहीं दूर इंतज़ार कर रहा हो आपका, उसे एटलीस्ट एक फ़ोन कॉल या एक चिट्ठी लिख दीजिए, ताकि उसे आप बता सको कि आप जानते हो कि वो इंतज़ार कर रहा है और आप भी उसका इंतज़ार कर रहे हो मिलने का। क्योंकि कब, किधर, क्या, कैसे, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो जी, कुछ दरवाजे बंद होने के बाद खुलती नहीं और कुछ दिल टूटने के बाद जुड़ती नहीं है दोस्तों। इसीलिए पहले ही, वक्त रहते ही, हमें याद कर लेना चाहिए कि वो इंसान है और हमें याद करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी और इसे लिखा था जयदीप ने, यानी कि मैंने। तो कृपया करके आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसे लगी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देता हूँ। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 40232348222। एक और बार दोहरा देता हूँ, हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 40232348222। और दोस्तों, कुछ ही देर में हमारे फ़ोन इन प्रोग्राम चालू हो जाएगा, हेलो रेनबो वाला, और आप वहाँ पर हमारे साथ रूबरू होकर बात कर सकते हैं। हम आपको पूछेंगे एक सवाल और मैं ये सवाल आपको बताऊंगा एक छोटे से गाने के बाद। गाने से पहले सुनते हैं एक संदेश।

वेलकम बैक दोस्तों। टाइम हो चुका है 1 PM और हमारा हेलो रेनबो सेशन यानी कि प्रोग्राम चालू हो गया है। और आज का ये प्रोग्राम चालू करने से पहले मैं एक दो चार मैसेजेस पढ़ लूँ। यहाँ पर मैसेज लिखते हैं, मैं हूँ श्रीनिवास फ्रॉम अमीरपेट।

0: कहानी सुन सुन सुनकर रुला दिया है जेडी जी, बहुत अच्छा लगा। मुझे एक डाउट है, वादा क्या था? जी, कहानी में वादा, वो विश्वनाथ जी का वादा यह था कि वो इंतज़ार करेगा अपने बेटे का लौटने का, और उसने वादा किया था कि वो लौट आएगा। तो इस वादे को तो विश्वनाथ जी ने पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उनका देहांत बीच में हो गया था, लेकिन उनके कुत्ते ने उनके वादे का पहरेदार दिया और उनके कुत्ते ने उसको पूरा किया। तो जी हाँ, बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। और एक और मैसेज है, मैं हूँ प्रिया फ्रॉम हैदराबाद, लिसनिंग टू योर प्रोग्राम फ्रॉम पुरी, और यहाँ पर कल से जगन्नाथ जी का रथ यात्रा शुरू होने वाला है, तो वो आप अटेंड करने के लिए वहाँ पर गई है। बहुत ही लकी है आप, और बहुत ही शुक्रिया हमको ये बात बताने के लिए कि आप पूरी से हमें सुन रही है, और ये कहती है कल से शुरू होने वाली है। जी हाँ, कल से पूरी में रथ यात्रा शुरू होने वाली है, और ये यह कहते हैं कि आपका स्टोरी बहुत अच्छा लगा, मेरा पूरा फैमिली के आंखों में आंसू ला दिया ये स्टोरी। हमारा कुत्ता था गुड्डू, वो 2 साल पहले उसका डेथ हो गया है एक्सीडेंट में। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि आपका कुत्ते के साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन जी हाँ, बहुत धन्यवाद आपका कि आपको ये स्टोरी इतना अच्छा लगा, और आप फैमिली के साथ पुरी में जाकर भी आप हैदराबाद का ये FM रेनबो 101.1 सुन रहे हैं, क्योंकि जी हाँ, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। और रही बात पुरी की, पुरी में कल से रथ यात्रा शुरू होने वाले हैं, पर्यटक पूरे दुनिया से वहाँ पर पहुँचते हैं, हजारों लाखों पर्यटक पहुँचते हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है, और बस जगन्नाथ जी की एक दृश्य पाने के लिए लोग तरस जाते हैं और बहुत इंतज़ार करते हैं, बहुत चलते हैं। तो जी हाँ, हम लोग देखते रहेंगे अपडेट्स, और कल भी हमारे यहाँ पर चलते रहेंगे प्रोग्राम्स जहाँ पर जिक्र होगा पुरी के जगन्नाथ यात्रा के बारे में। और जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमारा फ़ोन इन प्रोग्राम चालू हो चुका है, तो मैं पहले नंबर्स बताऊँ कि टॉपिक, मैं काम करता हूँ, पहले मैं नंबर बता देता हूँ। हमारे नंबर्स है 0402323-0030, 0402323-4821, और 0402970-4715। मैं एक और बार दोहरा देता हूँ, 0402323-0030, दूसरा है 0402323-4821, और तीसरा है 0402970-4715। और दोस्तों, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर, व्हाट्सएप पर 4023234822 पर। तो आप अपने मैसेजेस लिखकर भेजिए, हम ज़रूर पढ़ेंगे। और आज का सवाल है, बड़ा ही अनोखा सवाल है, हमेशा की तरह, यानी तो हर रोज़ की तरह नहीं, ये थोड़ा सा अनोखा है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसको समझे, और मैं चाहता हूँ कि इसका सभी से मैं जवाब सुनूँ। हमारे कॉल्स आना चालू भी हो चुकी है, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, अगर अगर आपको कोई मौका मिलता कोई एक अनोखी शक्ति पाने का, यानी कि सुपर पावर पाने का, तो उसमें आप क्या मांगते? जी हाँ, अगर आपको कोई मौका मिलता सुपर पावर लेने का, तो आप कौन सा सुपर पावर मांगते हो? तो जी दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे कॉलर से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ ఆ ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి ఇచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
2: నేహ, ఈ మధ్య నువ్వు చాలా రిలాక్స్డ్ గా కనిపిస్తున్నావు. ఎల్ఐసి యొక్క బీమా లక్ష్మి ప్లాన్ తీసుకున్నాను. చిన్న మొత్తాల పొదుపు పెద్ద రాబడిగా మారుతుంది. మనకి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కూడా ఉంటుంది. గ్యారంటీడ్ అడిషన్స్, 3 ఆకర్షణీయమైన ఆప్షన్స్ తో అడిషనల్ సర్వైవల్ బెనిఫిట్, ఇందులో ఆటో కవర్ కూడా ఉంది. ఈ ప్లాన్ ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసమే. ఎల్ఐసి హర్పల్ ఆప్కే సాథ్.

चाहो दोस्तों, वेलकम बैक। तो हमारे यहाँ पर अभी सरवर अली जी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। उन्होंने अपने पुराने रेडियो का फ़ोटो डाला है और वो कह रहे हैं कि वो हम मेरी कहानी और मेरी प्रोग्राम स्टार्टिंग से वो सुन रहे हैं। और वो कहते हैं, सर मैं तो अपने रेडियो रिपेयर में मस्त रहता हूँ। गुड आफ्टरनून, बहुत गुड आफ्टरनून सरवर अली जी, और बहुत शुक्रिया कि आप हमें सुन रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे लाइंस चालू है। हमारे नंबर्स मैं फिर से एक बार आपको दोहरा दूं, 0402323-0030, 0402323-4821, 0402970-4715। तो चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: బ్రో ఆకలేస్తుంది, బిర్యానీ తిందామా?
1: ఏ ఎప్పుడు బిర్యానీ ఏం తింటాం, పద హలీం తిందాం.
0: తిందాంలే గాని హలీం అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా?
1: హలీం ఎక్కడి నుంచో రావడం ఏంటి, మన హైదరాబాదే కదా.
0: కాదు, హలీం ఒక పర్షియన్ డిష్ నుండి ఎన్నో మార్పులతో ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత పాపులర్ అయింది.
1: ఓ అవునా?
0: ఇంకా దాంట్లో చాలా న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి.
1: సరే కానీ అసలు ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు?
0: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
1: జష్నే హైదరాబాదా, అదేంటి కొత్తగా?
0: ఒక్క హలీమే కాదు, ఇలాంటి మరెన్నో డిషెస్ గురించి మనందరికి చెప్పడానికి వచ్చేసింది
2: జష్నే హైదరాబాద్ at 2 p.m. only on FM Rainbow 101.9.
3: बैक दोस्तों. जी हाँ, तो मैं गाने से पहले आपको मैंने बताया था कि यदि अगर आपको कोई मौका मिलता कोई शक्ति पाने का, यानी कि कोई अनोखी शक्ति पाने का, जैसे कि अदृश्य होना, या नहीं तो फिर बड़ा या छोटा होना, या गायब होना, या गायब होना यानी कि अदृश्य होना, या नहीं तो आपकी आवाज़ बदलने की ताकत, ऐसे कौन सी शक्ति अगर आपको मौका मिला तो आप मांगना चाहते हैं? तो जी हाँ, हमारे साथ अभी लाइन पे देखते हैं कौन है. हेलो रेनबो.
4: हेलो रेनबो, गुड आफ्टरनून. आदाब जेटी सर.
3: गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून शेर खान जी, कैसे हैं आप?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे. और मेरा सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को भी प्यार भरा सलाम आदाब. अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हेल्दी रखे.
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए. तो शेर खान जी, आपने सुना हमारा प्रश्न क्या था आज का?
4: हाँ, आपका सवाल भी सुना और आपकी कहानी भी सुना, और आपकी कहानी सुन के मैं भी इमोशनल हो गया. और हर इंसान की जिंदगी से ये जुड़ी हुई कहानी है, हर इंसान के, कोई भी इससे नहीं बच सकता.
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
4: जी जी,
3: तो शेर खान
4: जी, तो है ना जेटी भाई, इंतजार इंतजार इंसान किसका इंतजार करता है? अपनों का, अपने अपनों के अपनेपन का. और अपना जो हक है, जो है, एक आस लगी हुई रहती है. और कहते हैं ना, जान जाए पर आस ना जाए.
3: जी जी जी,
4: तो आस रहती है इंसान को हर अपने अपने लोग, अपने वालों से, अपने जितने भी रिश्तेदार है उससे, दोस्तों से, या इंसान को इंसान से, हर इंसान को आस होती है. सबसे पहले तो अल्लाह से आस है, उम्मीद है, और रखना भी चाहिए. ना उम्मीदी भी इंसान को नाकाम कर देती है. तो उम्मीद है वो एक हर चीज की. तो इंसान जब तक जिंदा है तब तक ही अपने सब अपनों का हक अदा कर देना चाहिए. मरे बात कोई फायदा नहीं है पछता के. और जो आपका सवाल है तो उस पर बोलूंगा कि मुझे ऐसी अगर कुछ पावर मिलता तो मुझे अल्लाह ने ऐसा पावर दे देना कि मैं जब तक भी मेरी जिंदगी बाकी है तब तक भी है, मैं सारे इंसानों की गायब हो जाऊं, या जाहिर होके हो या गायब होके हो, मैं सारों की खिदमत करूं. यानी उनकी एक जरिया बनू. अल्लाह मुझे जरिया बनाए कि जा उसका नहीं ये पहुंचा, कौन परेशान है वहां पे जा उसको ये दे, उसकी ये खिदमत कर, उसकी जो भी चीज से होती है उस चीज से उसकी खिदमत करना चाहूंगा. और कोई घमंड और तकब्बुर वाला पावर नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं. क्योंकि मैं फना होने वाला हूँ, मैं खत्म होने वाला हूँ. जिंदगी है तो मौत भी है. सबसे बड़ा पावरफुल सुपर पावर तो अल्लाह है हमको सारी

0: है और कायनात
1: ये
0: को
1: बात तो
0: बनाने
1: बहुत
0: वाला,
1: सच है।
0: तो मुझे कुछ पावर मिल जाए तो बस मैं खिदमत करते करते, अल्लाह की इबादत करते करते ही खत्म हो जाऊं। कोई ऐसा पावर ना मांगू कि जिसमें पावर में मैं अपना सब कुछ भूल जाऊं और बस एंजॉय कर, एंजॉय वाला नहीं, मुझे खिदमत करने वाला पावर
1: जी
0: चाहिए बस,
1: हम समझ गए शेरखान जी,
0: अपनी
1: बहुत
0: दुआओं
1: ही
0: से और अपने कर्मों से, अपने अच्छे आमालों से बस।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शेरखान
0: और
1: जी।
0: हमारे मुमताज बाजी को, जमीन बाजी को, मोहम्मद अफजल भाई को मेरा प्यार भरा सलाम है। और जेठी भाई एक गाने की रिक्वेस्ट है
1: जी
0: अगर
1: जरूर
0: मिल जाए
1: बताइए ना।
0: तो, फिल्म है दाग, पुरानी फिल्म दिलीप कुमार की, तलक महमूद की आवाज में है।
1: हाँ जी
0: ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया।
1: जी वाह वाह वाह वाह
0: ये
1: बहुत
0: सॉन्ग है,
1: अच्छा।
0: अगर ये ना मिले तो सफर

0: जी वाह वाह वाह वाह,
1: ये
0: बहुत
1: सॉन्ग है,
0: अच्छा।
1: अगर ये ना मिले तो सफर फिल्म का है। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे।
0: हम जरूर जरूर लगाएंगे शेर खान जी,
1: बहुत शुक्रिया
0: बहुत
1: जेठी भाई, आप इतना कीमती वक्त दिए भाई, आप इतनी तरक्की करें, अल्लाह आपकी बहुत कामयाब बनाए, कामयाबी आपके कदम चूमे। शुक्रिया
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया
1: शुक्रिया।
0: आपका शेर खान जी। तो ये थे शेर खान जी, तो इनको ऐसी शक्ति चाहिए जो लोगों की मदद कर सके। हम देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो रेनबो।
2: हेलो,
0: हेलो, यस सर,
2: गुड आफ्टरनून
0: गुड
2: मोदी
0: आफ्टरनून।
2: साहब।
0: जी सर, आपका नाम?
2: मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अभी अभी शेर खान साहब सलाम बोले मेरे को, शुक्रिया उनका, बहुत बहुत उनको भी सलाम।
0: हाँ जी, अब अफजल जी बताइए, आप कैसे हैं?
2: हाँ, फजले रबी अच्छे ठीक है।
0: जी जी जी
2: बिल्कुल भाई,
0: आपको
2: ऐसी
0: शेर खान
2: ताकत
0: जाए शेर खान जी
2: मिलेंगी।
0: भी पूछ रहे थे आपको।
2: हाँ, मैं अभी सलाम उनका कबूल किया ना।
0: जी जी जी जी
2: जय जी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको नंबर बोलूं जी मेरा।
0: नहीं अफजल जी, हमारा ये रेडियो स्टेशन ऐसा वो अलाउ नहीं करता है हमको ऐसा करने का।
2: हाँ, वही परेशानी है ना
0: जी जी
2: जी,
0: हम
2: उनका
0: समझ
2: नंबर
0: सकते हैं।
2: पाना वो तो आपको कॉल के बाद में फोन करे तो आप लोग देते क्या, नंबर
0: नहीं अफजल जी,
2: नहीं हो
0: हम
2: सकता
0: देखेंगे
2: ऐसा।
0: इसके बारे में,
2: हाँ
0: लेकिन आप पहले एक बात बताइए, आपने हमारा सवाल सुना है?
2: हाँ सुना मैं कसा जी, सुना आपकी कहानी भी सुना मैं, बहुत
0: जी
2: अच्छी कहानी थी, सबा खामोश कहानी थी आपकी, लेसन मिल रहा उसके अंदर एक।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अफजल जी। जी तो
2: पूरे जितने भी रेडियो में कहानी आते हैं ना वो पूरे सुनता हूँ मैं।
0: जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
2: हाँ,
0: लगता है एक्चुअली,
2: विवेक
0: क्योंकि
2: भारती में भी आती कहानी है कि जुमा के दिन जो है वो कहानी आती
0: जी जी जी
2: 4 बजे से 5 बजे तक का,
0: हाँ जी हाँ जी
2: वो भी सुनता हूँ। रात में 12 बजे जो है सैटरडे से वहां से दिल्ली से कहानी आती,
0: जी हाँ जी
2: वो भी सुन रहा हूँ। हाँ
0: जी तो आज आपने हमारा सवाल सुना है अफजल जी।
2: हाँ हाँ मैं सुना, अगर मेरे को कोई गैबी ताकत अगर मिल जाए तो
0: जी
2: मैं सारी दुनिया की जो परेशानियां है, लड़ाई झगड़े ये तमाम जो भी है आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का हाल
0: जी
2: तो जो भी है, मैं उनके लिए दुआ करूंगा और उनको नेक राह पे लाने के, सब जैसा पहले हिंदुस्तान था वैसा ही हिंदुस्तान में चाहता हूँ, जमीन पे जन्नत बन जाए बस। फिर
0: जी मैं
2: भी
0: समझ
2: यहाँ
0: सकता हूँ।
2: पलटादार लड़ाई झगड़े ये बहुत तकलीफ दे बात है, हर एक के
0: जी
2: लिए, सबके सबके लिए तकलीफ दे बात है। तो
0: हम समझ सकते हैं
2: मैं जो
0: अफजल जी।
2: है तमाम गरीबों के लिए मदद करना चाहूंगा, जैसा शेर खान साहब बोले वो भी आधी बातें तो मेरी भी है उसके अंदर, उनकी बातों से मैं मुत्तफिक हूँ,
0: जी
2: मैं भी
0: जी
2: वही
0: जी
2: चाहूंगा जो शेर खान साहब तकरीबन तकरीबन चाह रहे हैं।
0: बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की अफजल
2: हाँ
0: जी, बहुत
2: शुक्रिया भैया,
0: शुक्रिया
2: शुक्रिया।
0: जी। तो दोस्तों ये थे अफजल जी, और ये इनका भी कहना है कि उनको ऐसी शक्ति चाहिए जो लोगों की मदद कर सके। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेलो रेनबो,
2: हेलो, नमस्कार जी,
0: नमस्कार।
2: मैं वॉलेट प्रभा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ,
0: प्रभाकर जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं बेंगलुरु से। बिल्कुल
0: ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। आप कैसे हैं?
2: बहुत बहुत बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, आप कैसी है?
0: हम अच्छे हैं सर। आप तेलुगु बात करते हैं?
2: हाँ, तेलुगु
0: पार्ले
2: तेलुगु
0: सर
2: ना,
0: मात्लाडंडी, नो प्रॉब्लम, मेरे तेलुगु लो मात्लाडंडी, ఎలా ఉన్నారు మీరు?
2: అనేరా సార్, అనేరే నండే,
0: అవునండి, అవునేరేనండి,
2: నేనే కదా ఫస్ట్, నాది సూపర్ పవర్ వస్తే నేనేం చేస్తా అంటే ఓలేటి ప్రభాకర్ రావు ని
0: చెప్పండి సార్.
2: మన పులిశెట్టి మెహర్ బాబా, ఇంకా మన కాలరు మురళి, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ కాలరు ఆయన
0: షేర్ ఖాన్
2: కాన్సాబు,
0: గారు,
2: ఆయనకి కళ్ళు వచ్చాయని చెప్పని నేను పవర్ ఇస్తాను అనమాట,
0: వావ్
2: కళ్ళు
0: సార్,
2: వచ్చారు వాళ్ళంతా పాపం అంధా కానూన్ హే,
0: ఎస్ సార్ ఎస్ సార్,
2: వాళ్ళకి కళ్ళు కనిపించవు, వాళ్ళకి కళ్ళు వచ్చేటట్టుగా చేయమని చెప్పని నేను సూపర్ పవర్ ఫస్ట్ ఉపయోగిస్తాను.
0: సార్ నిజంగా చాలా చాలా మంచి హృదయం సార్ మీది.
2: దాని తర్వాత ఇంకా నా స్వార్థం కూడా కొంచెం
0: చెప్పండి.
2: ఉపయోగించుకోవాలి కదా,
0: డెఫినెట్గా సార్, కలియుగం ఇది, చెప్పండి.
2: అన్ని టెంపుల్స్ కి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పాను, ఇలాగా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేయాలి.
0: ఎస్ సార్ ఎస్
2: ఎస్
0: సార్,
2: బద్రీనాథ్ ద్వారకా అవి నాకు లాస్ట్ కోరిక ఉండిపోయింది,
0: అవును
2: అలాగే మనకి సూపర్ పవర్ కానీ వచ్చిందంటే నాకు నేను అంతా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ సాయంత్రం కల్లా వచ్చేస్తాను అన్నమాట.
0: వావ్ సార్, సార్ మీ పేరేమన్నా

0: స్టోరీ అంటే నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు నేను పెంచుకున్న కుక్క గుర్తుకొచ్చింది.
1: స్టోరీ. ఓ
0: స్టోరీ
1: యా,
0: అవునండి.
1: థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు వింటున్నారు. ఎలా ఎలా అనిపించింది మీకు స్టోరీ?
0: మంచిగా ఉందండి.
1: థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. నేను ఇట్లానే
0: మంచిగా ఉన్నాం.
1: ఇట్లానే నేను స్టోరీస్ తెస్తూ ఉంటాను, మీకు వినిపిస్తూ ఉంటాను మీ అందరికీ.
0: థ్యాంక్ యూ.
1: థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. తో దోస్తో, హమ్ దేఖ్ సక్తే హై లోగ్ సిర్ఫ్ దూసరో కే లియే హీ మాంగ్ రహే, అప్నే లియే కుచ్ నహీ మాంగ్ రహే. బహుత్ అచ్చా లగ్ రహా హై సబ్ సున్కే. దేఖ్తే చలియే, దేఖ్తే హమారే అగ్లే లైన్ పే, అగ్లే కాలర్ లైన్ పే కౌన్ హై. హలో రెయిన్బో.
2: హరి ఓం.
1: హరి ఓం సర్.
2: मैं विलास पेनुरकर नल्लाकुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ.
1: विलास जी, मैं जयदीप जेडी.
2: ओ कैसे हैं आप?
1: गुड सर, गुड सर. आप कैसे हैं?
2: मैं बहुत अच्छा हूँ, आनंदित हूँ.
1: जी सर, अगला रिकॉर्डिंग कब है आपका?
2: ओ तेलुगु वाला तो हो गया है
1: जी,
2: अभी पता नहीं, अभी जब निमंत्रण आएगा तो
1: जी,
2: आ जाएंगे.
1: समझ गए. बहुत शुक्रिया, आप हमें सुन रहे हैं. एंड आपने आज का टॉपिक सुना?
2: हाँ जी, हाँ जी.
1: तो जी विलास जी, बताइए, अगर आपको कोई ऐसी ऐसा मौका मिलता, आपको कोई अनोखी शक्ति पाने का, तो आप क्या मांगते?
2: हाँ जी, मैं मेरी इच्छा ये है कि हमारे देश में राम राज्य आ जाए.
1: जी जी जी
2: हमारे
1: समझ
2: देश
1: सकते
2: में
1: हैं.
2: सभी सुखी रहें, सभी समाधानी रहें.
1: जी सर, समझ
2: हमारे
1: सकते हैं.
2: देश में सभी योगाभ्यास करें, अपने आप को स्वस्थ रखें.
1: जी हाँ जी,
2: हमारे देश में किसी पुलिस की आवश्यकता ना हो.
1: जी,
2: और एक समय में हमारा देश जो इतना फैला हुआ था
1: सोने की
2: वैसे
1: चुड़िया
2: ही फिर से बन जाए.
1: जी हाँ जी,
2: जैसे कि ब्रह्म देश है या बहुत सारे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सारे हमारे देश के ही भाग
1: जी
2: हुआ
1: हाँ
2: करते
1: जी,
2: थे
1: एक
2: एक समय.
1: समान में. जी जी
2: तो मैं चाहूंगा कि ये फिर से हमारा देश महान बन जाए और ये सारे जो राष्ट्र हैं वो सब हमारे देश में मिल जाए.
1: बहुत अच्छा सपना है सर आपका.
2: और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारा देश ऐसा हो कि ना कोई चोरी करे, ना कोई डकैती करे, हर
1: जी
2: एक व्यक्ति को सुख मिले, हर एक व्यक्ति को आनंद मिले, हर एक व्यक्ति समाधानी हो.
1: जी जी सर, क्योंकि हमारा देश ने बहुत कुछ झेला है, हम समझ सकते
2: जी
1: हैं.
2: जी जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया विलास जी आपका, बहुत
2: धन्यवाद
1: जल्द मिलेंगे
2: धन्यवाद.
1: आपसे. थैंक यू. तो ये थे विलास जी. सभी लोग अपने देश के लिए पूछ रहे हैं, किसानों के लिए पूछ रहे हैं, और कुछ स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए पूछ रहे हैं. हमारे पास मैसेजेस भी बहुत सी आई हैं व्हाट्सएप पर. ये है PB श्रीनिवास पाशा गरला किस्तापुरम से. वो कह रहे हैं कि वो हमें सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है उनको. बहुत बहुत थैंक यू श्रीनिवास जी. और ये है मास्टर आनंद वर्धन. थैंक यू सो मच मास्टर आनंद वर्धन जी. ये अपने शेषागिरी राव विजया और नाचारम से बात कर रही है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नाचारम से हमें सुन रहे हैं. और ये मैसेज करते हैं हमें अश्विन, अश्विन जी जय श्री कृष्ण. और मैसेज भेज सकता हूँ? जी हाँ अश्विन जी, आप हमें ज़रूर मैसेज भेज सकते हैं. कृपया करके आप हमें मैसेज भेजिए. और ये है सॉन्ग रिक्वेस्ट, आँखों में काजल है फिल्म दूसरा आदमी. हम ज़रूर कोशिश करेंगे सर आपका ये फरमाइश पूरी करने का, अगर हमारे सिस्टम में गाना मिलेगा और वक्त का हमारे पास अगर साथ दिया है तो हम ज़रूर प्ले करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें व्हाट्सएप पर भी जुड़ रहे. अभी देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है. हेलो रेनबो.
3: नमस्ते आरजे तेजी साहब.
1: नमस्ते सर. आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: जी
1: आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
3: मैं हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल बात कर रहा हूँ सर.
1: इकबाल जी, मैसेज का इंतजार कर रहा था मैं आपका, आपने कॉल ही कर दिया. बहुत शुक्रिया आपका.
3: थैंक यू सर.
1: जी बताइए सर, कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, फजल है.
1: जी जी सर,
3: मेरा भारत महान
1: सर, सच है.
3: अपना भारत महान, ये सबसे बड़ी शक्ति है हमारे धर्म.
1: जी सर, बहुत ही
3: अनेकता में एकता का जो गर्म होता है आदमी को, जो अनेकता में एकता की जो है ना, और ये धरती माता जो माता है, ये सब हमारे जो अलग अलग जो मुल्का बने हैं ये सब हमारे बच्चे हैं.
1: जी सर जी,
3: धरती माँ के बच्चे हैं, इनको

0: अलग मैं नहीं कह सकता कि हमारे कभी भी तारीख उठा के देखेंगे तो हमारा ही बच्चा कहेंगे
1: जी सर,
0: बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये टुकड़े नहीं, ये माता के बच्चे हैं।
1: जी
0: ये
1: जी
0: कभी
1: समझ
0: ना कभी
1: सकते
0: एक
1: हैं।
0: ना एक दिन इसी की सूरत से माप इनको देखा जाएगा, और आज भी देखा जा रहा है तो हमको इन्हीं की सूरत से देख रहा है, ये भारत के ही हिस्सा है बोल।
1: जी सर, एकदम सच
0: यही
1: में।
0: हमारी उपलब्धि है, यही हमारी परंपरा है।
1: जी सर,
0: और मैं यही कहता हूँ हर वक्त कि अनेकता में एकता की जो है ये सबसे बड़ी शक्ति है हमारी।
1: हाँ सर, ये
0: और मैं यही
1: वाकई में
0: मानता
1: सच
0: हूँ
1: कहा है
0: जो
1: आपने।
0: कहते हैं आपके, हमको अगर भगवान से मांगना है तो क्या मांगना है,
1: जी सर,
0: अनेकता में एकता ये सबसे बड़ा विशाल बात है।
1: जी सर,
0: यही लेके चल रहे हैं हम और यही लेके भी चलना चाहिए, और सारी दुनिया भी इसी को मानती है, ये मेरा मानना।
1: ये वाकई में सच है सर, और मानना चाहिए।
0: थैंक
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो रेनबो।
2: हेलो,
1: हेलो,
2: गुड आफ्टरनून सर।
1: गुड आफ्टरनून।
2: हेलो,
1: हेलो सर, बताइए आपका नाम
2: गुड
1: और कहाँ से
2: आफ्टरनून
1: बात कर
2: सर।
1: रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, बताइए।
2: ये रमेश बात कर रहा हूँ मैं
1: हाँ जी, रमेश जी,
2: सर। क्या
1: अलाउनर हो।
2: टॉपिक, क्या ट्रैफिक के ऊपर बात करना है जी?
1: सॉरी, टॉपिक के ऊपर सर।
2: क्या
1: हाँ, आज का टॉपिक
2: सर?
1: है, अगर कोई अनोखी शक्ति आपको मांगने की मौका
2: जी जी
1: मिलता है तो
2: हाँ,
1: क्या है।
2: अच्छा, रमेश बात कर रहा हूँ मैंने। तो
1: हाँ जी,
2: प्लास्टिक कवर इस्तेमाल करना बहुत अच्छा नहीं है सर। उन्होंने
1: हाँ सर, करेक्ट है।
2: उसके अंदर बहुत चाला मतलब प्लास्टिक कवर तो अभी तुंदर करीब हो,
1: అవును
2: పేపర్
1: సార్,
2: కవర్స్ వాడడం చాలా మంచిది, పొల్యూషన్ కూడా ఉండదు దాంతోనే,
1: అవును సార్,
2: దాంతో
1: కరెక్ట్,
2: ఉపాధి కూడా కలుస్తుంది అనమాట ఈ పేపర్ కవర్స్ కానీ,
1: కరెక్ట్ సార్,
2: చాలా
1: పొల్యూషన్.
2: మంచిది. అందుకని పేపర్ కవర్స్ వాడడం మంచిది. మనం ఎక్కడ పోతే కూడా మనం చేయి సంచి జేబులో పెట్టుకొని పోయి మన సంచిలో మనం వేసుకుంటాం, ప్లాస్టిక్ చేసి వాడదు దాన్ని.
1: అవును సార్, కరెక్ట్.
2: ధన్యవాదాలు అండి, చేయడం
1: అయితే
2: ద్వారా
1: అయితే మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారంటే, మీరు ఆ శక్తి దొరికితే మీరు ప్లాస్టిక్ మొత్తంనే తీసేద్దామని, అంతే కదా సార్? హలో जी हाँ, तो सर का बोलना ये है कि दुनिया में प्लास्टिक बहुत बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है, रिसाइकल होता है लेकिन डिकम्पोज नहीं होता है, जिस कारण बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो वो प्लास्टिक हटाना चाहते हैं। चलो देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। हेलो रेनबो।
3: राधे राधे,
1: राधे राधे
3: सुख
1: सर,
3: चैन से रहना है तो राधे राधे कहना है।
1: ज़रूर सर, ज़रूर। कैसे हैं सर आप?
3: एकदम ठीक ठाक, आप कैसे हैं जयदीप जी?
1: गुड सर, बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया, आप हमें सुन रहे हैं
3: तो
1: सर।
3: से राजा हमारा के खबर दे रहे हैं आप
1: जी सर, हाँ, हम चाहते हैं कि वो पावर आपको मिले, वो नहीं तो उसके उसके थोड़ा हिस्सा तो मिले। तो आज का टॉपिक ये है, अगर आपको कोई अनोखी शक्ति, ये शक्ति नहीं, अनोखी शक्ति है। जी,
3: अनोखी शक्ति क्या है जयदीप जी? ये जो
1: अनोखी।
3: जन्म है ना, यही एक अनोखी शक्ति है। एक विजुअली
1: जी
3: अनविजुअली विजुअली
1: जी
3: शक्ति है ये।
1: जी जी जी सर,
3: ये जो देश है, आप जो चाहे वो कर सकते, मगर इसमें एक दीक्षा चाहिए।
1: जी सर,
3: वो दीक्षा का नाम है हर वक्त आप सत्य से रहना, ऑनेस्ट से रहना। तुम्हारे को कौन सा भी तकलीफ हो रहा, वो तकलीफ दूसरों को नहीं देना चाहिए यार।
1: जी सर, करेक्ट है सर।
3: एक एक अपन ये दीक्षा करके अगर चले, आप चाहे तो 5 एलिमेंट्स को आप रूल कर सकते हैं।
1: जी सर, एकदम सच कहा है
3: बस
1: आपने।
3: यही शक्ति है, ये अनोखा शक्ति नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सच्चा शक्ति अपने दिए से है।
1: जी सर, जी
3: उनका नाम जो अपन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते, क्रिस्ट
1: जी
3: बोलते,
1: जी
3: कुछ भी
1: जी
3: बोलते हैं, मगर वो शक्ति को ना रूप नहीं है, ना नाम नहीं है, ना कुछ भी नहीं है।
1: जी सर,
3: वही शक्ति जो है इंसान है।
1: करेक्ट सर।
3: वो इंसान ही नहीं पहचान सक रहा कि मैं हूँ एक भगवान हूँ। भगवान हो सकते हैं अपन,
1: जी सर, जी
3: भगवान हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? अब जो मैं बोला, जो भी चीज है तुम्हारा को क्या सुखी दे रहा, वो सुखी तुम सबको दे दो,
1: जी सर,
3: चाहे
1: करेक्ट,
3: वो पेड़ हो, पहल हो, पर्वत हो, या जमीन हो, या किमी क्रिटिकल बोलते ना
1: जी
3: तेलुगुलो
1: जी जी
3: चेपमाटे चेप्तान
1: पार्ले
3: जयदीप
1: सर,
3: गारु।
1: చెప్పొచ్చు।
3: ఇంకోటి ఏంటంటే, మనకు ఈ ఇచ్చిన ఈ జన్మ ఏంటంటే దాన్ని సద్వినియోగం ఒక కైవల్యానికి తీసుకెళ్లాలనుకుంటే మీరే పరమాత్ముడు కావచ్చండి.
1: అవును సార్, అది
3: ఇంకా ఇంకా
1: కరెక్టే,
3: వేరే శక్తిని దేవుడాడుకోవడం ఎందుకు? అదే అదే
1: కరెక్ట్,
3: మనం
1: మన
3: ఒక మూర్ఖత్వం అని నేను అనుకుంటాను, అది
1: అవును
3: మూర్ఖత్వం అని అనుకుంటాను.
1: అవును
3: ఇప్పుడు
1: సార్,
3: నీకు నీకున్నది ఎందుకంటే నీకు ఈ శరీరం ఇచ్చింది. ఒకటి నాకు చెప్పండి, ఎంత పెద్ద ఇండస్ట్రీలోనైనా
1: అవును సార్,
3: ఒక మనిషిని తయారు చేసి ఒక

हाँ, मैं हूँ आरजे जेडी और आप सुन रहे एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। हमें बहुत से लोग उन्होंने अपनी मन में जो बातें हैं वो शेयर की इस कॉलिंग सेगमेंट में, और हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छी अच्छी गाने और कहानी भी सुनी हमने, और हमें व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों ने मैसेज किया। और हमें एक और मैसेज आया है अश्विन जी कोठी कुशल मार्केट से, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा आपको भी। और ये लिखते हैं, वफा की उम्मीद किस से करे, मिट्टी के बने लोग कागज़ में बिक जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है। ये कहते हैं कि मिट्टी के बने लोग कागज़ में बिक जाते हैं। कागज़ यानी रुपया, यानी पैसा। बहुत ही सच कहा आपने, लेकिन ये बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वफाई, क्योंकि आज हमारा कहानी भी वफाई, वफादारी पर ही था। वफाई और वफादारी ये हमें हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। कोई इंसान उससे बड़ा उम्मीद रख ही नहीं सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विन जी, और यहाँ पर मैसेज करते हैं हमको, और ये है AUD करके नाम है, वरंगल से मैसेज करते हैं। वरंगल जिला, एलिब्स नगर, नुंची, उर्मिला सतीश, उर्मिला सतीश गारू, चाला चाला धन्यवाद। आलू मिर्माक में से चेसारू मिर्माक शोविंटुनरू। एंड दोस्तों, तो हमने आज ढेर सारी बातें की, अनोखी अनोखी बातें की। हम लोगों ने ये जाना कि हमारे कान में गाना क्यों बजते रहता है, और हमने ये भी जाना, इसके बारे में बात किया है, डेजावू, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ जो ऑलरेडी बीत चुका है, कुछ ऐसा लोग हम ऑलरेडी मिल चुके हैं, कुछ ऐसी बातें जो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, लेकिन फिर से लगता है कि ये नया चीज़ नहीं लगता है, इसको बोलते हैं डेजावू। तो हम लोगों ने ढेर सारी बातें की, फ़ोन के बारे में अच्छी अच्छी बातें की, और अभी समय का इशारा करता है बाय बाय टाटा कहने का, और अगला सेगमेंट है जश्न हैदराबाद, और उसमें आपको सुनाएंगी स्वाति जी बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस खाने की रेसिपीज़ के बारे में, और खाने के बारे में, और बहुत ढेर सारी बातों को बताएंगी वो, अच्छे अच्छे चलिए दोस्तों, अभी हम विदा लेते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: கோரு
1: ரெண்டு பல்லம் சக்கரமா.
2: FM Rainbow 101.9.
3: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM Rainbow 101.9 MHz पर. पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नैरंग.

ये नमी, लहजे की लर्जिश या मुस्कुराहट की ओट में छुपी किसी थरथराहट से जाहिर होती है। लेकिन जब यही एहसासात लफ्जों का रूप इख्तियार करते हैं तो अक्सर कम पड़ जाते हैं। लफ्ज सिर्फ इशारा करते हैं, समझाते नहीं, जबकि एहसासात पूरी शिद्दत के साथ दिल में उतरते हैं। इसीलिए कभी एक जुमला बहुत कुछ कह जाता है और कभी लंबी गुफ्तगु भी किसी दिल की कैफियत बयान नहीं कर पाती। असली बात यह है कि दिल की दुनिया अल्फाज की दुनिया से कहीं गहरी, रोशन और सच्ची होती है। इंसान की खूबसूरती भी यही है कि वो सिर्फ वो नहीं जो कहता है, बल्कि वो भी है जो महसूस करता है। आपके करीब बैठने वाला हर शख्स आपका करीबी नहीं होता साहेब, ना ही आपका गमखौर होता है, बल्कि बाज इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके मन की बात टटोल कर आपको ही मात देने की चाह में होते हैं। रिश्ते सिर्फ खून का नहीं, एहसास का नाम है। रिश्ते सिर्फ नामों का खेल नहीं होते, रिश्ते एहसास से बनते हैं। वो लोग भी अपने हो जाते हैं जो खून के नहीं मगर दिल के करीब होते हैं। हम जिंदगी में कई लोगों से मिलते हैं, कोई चंद लम्हों के लिए, कोई चंद सालों के लिए और कोई हमेशा के लिए। कुछ रिश्ते हमें ताकत देते हैं, कुछ हमें तोड़ देते हैं, कुछ हमें सबक दे जाते हैं, कुछ हमें बदल देते हैं। असल बात यह है, रिश्ते लफ्जों से नहीं, रवैयों से पहचाने जाते हैं। जो सिर्फ बातों में साथ हो वो साथी नहीं, और जो खामोश रहकर भी एहसास में साथ हो वही असल रिश्ता है। कुछ लोग आपके करीब रहकर भी दूर होते हैं और कुछ फासले पर रहकर भी दिल में बसते हैं। याद रखें, करीब होना जरूरी नहीं, करीब महसूस होना जरूरी है। इंसान की पहचान उसके ताल्लुकात से नहीं, उसके बर्ताव से होती है। जो रिश्तों में मोहब्बत, आसानी और खैर छोड़े, वो इंसान जिंदगी में रोशनी लाता है। कभी कभी हम जिस रिश्ते के लिए रोए होते हैं, वही रिश्ता खुदा किसी और के जरिए बेहतरीन सूरत में वापस दे देता है। रिश्ते कम हो लेकिन सच्चे हो, क्योंकि जिंदगी में वफादारी तादाद से नहीं, दिल से नापी जाती है। जब कोई दिल दूसरे के दर्द को महसूस करता है तो वहाँ इंसानियत जिंदा हो जाती है। हमदर्दी वो ताकत है जो जख्मों को, बंद आंसुओं को खामोश और रिश्तों को मजबूत कर देती है। यही एहसास किसी अजनबी को अपनों जैसा बना देता है और किसी थके हुए दिल को सुकून देता है। तो हमको चाहिए कि अगर हमको रिश्ते बरकरार रखना है तो हमें उस रिश्ते के एहसास को समझना होगा। अगर हमसे कुछ कोताही हो भी जाए तो हम उनकी कोताहियों को माफ़ करते हुए दुनिया में हमको आगे बढ़ना चाहिए। खुदा की दुनिया बहुत वसी है, अपने मुताबिक लोग ढूंढे, वरना अकेले रहने की आदत डाल लें। अपने सुकून पर समझौता कभी ना करें।

0: अभी आप सुन रहे थे हरफे ताविंदा, पेश कर रही थी फहमिदा फहमूश। सामाईन हवाई सुनते हैं मतसाइल हमें जानो सिलसिले तहत, तकरीर उनवान है अदब और इंसान, पेश कर रहे हैं एम ए हाई।
1: अदब इंसानी जज्बात, एहसासात, अफकार और मुशाहदात का ज़बान व क़लम के ज़रिए खूबसूरत और दिलकश इजहार है। अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो हर वो तहरीर जो इंसान के अंदर अच्छाई

अहम उसूल है। हर बच्चा अपनी जगह मुनफरद सलाहियत रखता है। बाज़ बच्चे तालीमी मैदान में नुमाया होते हैं, बाज़ फ़नून में, बाज़ खेलों में और बाज़ समाजी महारतों में। इन्हें दूसरों से मुवाज़ना करने के बजाय इनकी इनफरादी खूबियों को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। एक छोटी सी तारीफ, एक मोहब्बत भरा जुमला और एक हौसला अफजा रवैया बच्चे की ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। तारीख गवाह है कि अजीम शख्सियात के पीछे अजीम माओं का किरदार मौजूद रहा है, जिन लोगों ने दुनिया में इल्म, फ़िक्र, क़यादत और अखलाक के चिराग रोशन किए।

दोस्तों, आज 15 जुलाई है और सारी दुनिया में आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस साल का थीम रखा गया है स्किल्स फॉर ए शेड फ्यूचर, एक मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए महारतें। बात यह है कि आज का दौर सिर्फ डिग्रियों का नहीं बल्कि हुनर का है। हमारे नौजवानों के पास ख्वाब भी है और जज्बा भी है, लेकिन इन ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए साइंस, डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जदीद महारतों की ज़रूरत है। आइए दोस्तों, सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म मशाल से। इस फिल्म के गीत को गाया था किशोर कुमार जी ने। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत से इसे सजाया था हृदयनाथ मंगेशकर ने।

फिल्म मशाल से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, बात की जाए डिग्री और हुनर की, तो आज के दौर में सिर्फ किताबी इल्म काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके साथ हुनर का होना ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, और ये तकदीर तभी बदलती है जब नौजवानों के हाथ किसी हुनर से आरास्ता हो। आइए दोस्तों, सुनते हैं कि जिसको लिया है हमने फिल्म मिस्टर इंडिया से। इस फिल्म के गीत को गाया था किशोर कुमार जी ने, और गीतकार है जावेद अख्तर। संगीत से इसे सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। आइए सुने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मिस्टर इंडिया सीरिया का ये गीत। दोस्तों, आज के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों को रिवायती कामों से

साथ साथ जदीद दौर की महारतें सिखाएं ताकि वो दुनिया के शाना बशाना चल सके और तरक्की की राह पर तेजी से गामजन हो सके। आइए दोस्तों सुनते हैं इसी बार एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म चक दे इंडिया से। इस फिल्म के गीत को गाया है मैरियन डी क्रूज, सली मर्चेंट और सुखविंदर सिंह ने। गीतकार है जयदीप सैनी और संगीत से इसे सजाया है सलीम सुलेमान ने। आइए सुने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चक दे इंडिया से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों, इस साल यानी 2026 में जब हम ये दिन मना रहे हैं, तो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो और नई ईजादात ने हमारे सामने कई मौक़े के दरवाज़े खोल दिए हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हम इन सलाहियतों को कैसे बरूए कार लाकर ना सिर्फ अपने लिए फ़ायदेमंद बनाएं, बल्कि माशरा और मुल्क के लिए अपनी खिदमात अंजाम दें। आइए दोस्तों, एक सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म संजू से। इस फिल्म के गीत को गाया है सुखविंदर सिंह और श्रिया घोषाल ने। गीतकार है शेखर अस्तित्वा और संगीत से इसे सजाया है विक्रम मॉन्ट्रोस ने।

फिल्म संजू से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों आपने सुना होगा कि इस साल आलमी यौम महारत नौजवानों का ऑफिशियल थीम है स्किल्स फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि अब महारतें सिर्फ मुलाजिमत हासिल करने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए ज़रूरी है जो ज़्यादा पायदार, सस्टेनेबल, पुरमन और टेक्नोलॉजी के लिहाज से मजबूत हो। इससे ना सिर्फ माशरे में एक नई तब्दीली आएगी बल्कि लोग तरक्की करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। आइए दोस्तों सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म ब्रदर्स से। इस फिल्म के गीत को गाया है अजय अतुल और विशाल दादलानी ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ब्रदर्स से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों, आज दुनिया में तीन अहम बातों पर जोर दिया जा रहा है, जैसे लर्न, अनलर्न और रीलर्न। यानी जो वक्त के साथ नई चीज़ें सीखे, पुरानी और नाकारा चीज़ों को छोड़े और दोबारा से नई महारतें अपनाने की सलाहियत रखता हो। इन तीन चीज़ों के साथ साथ इंसान के अंदर ये सलाहियत पैदा होती है कि वो ना सिर्फ ज़माने के साथ जो नई ज़रूरतें और तकाजे हैं उन सबको पूरा करे, बल्कि एक नई तालीम, एक नई जहद और एक नई कोशिश के साथ अपने मुस्तकबिल को मजबूत और महफूज कर सके। इसीलिए इन तीन बातों पर जोर दिया जा रहा है। आइए सुनते हैं दोस्तों इसी पर एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म रंग दे बसंती से। इस फिल्म के गीत को गाया है नरेश अय्यर ने और संगीत से इसे सजाया है ए आर रहमान ने। आइए सुने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म रंग दे बसंती से लिया गया ये गीत। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेनबो 101.9 MHz पर। आप सुन रहे हैं गीत सुरीले का तजा में, कुछ सुरीले गीत। आइए दोस्तों, गीतों के सिलसिले को जारी रखते हैं और सुनते हैं अगला गीत जिसको लिया है हमने फिल्म लव यात्री से। इस फिल्म के गीत को गाया है दर्शन रावल और असीस कौर ने। गीतकार है दर्शन रावल और शब्बीर अहमद। आइए सुने।

फिल्म लव यात्री से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, और जिंदा दिल शख्स वो होता है जो ज़िंदगी को खुले दिल से जीता है और एक खुले जहन से ज़िंदगी को देखता है। और ज़िंदगी में जो भी हालात हो उसका खंदा पेशानी से मुकाबला करता है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म काइट से। इस फिल्म के गीत को गाया है के ने। गीतकार है नसीर फराज और संगीत से इसे सजाया है राजेश रोशन ने। आइए सुने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म काइट्स से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी का हर लम्हा लासानी और कीमती है, चाहे ये सुबह हो, शाम, दोपहर या रात का वक्त हो। ज़िंदगी का हर पल, हर लम्हा ना सिर्फ लासानी है बल्कि कीमती है, इसीलिए ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीना चाहिए। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसको लिया है हमने फिल्म ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से। इस फिल्म के गीत को गाया है सूरज जगन, जॉय बरुआ और शंकर महादेवन ने। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत से इसे सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों हमारे ज़िंदगी में जुनून, जज्बा, पैशन बहुत मायने रखता है। ये ना सिर्फ इंसान को मुतहर रखता है बल्कि मकासद के हसूल में इनका एक अहम रोल होता है। इससे ना सिर्फ मकासद को हासिल किया जाता है बल्कि एक जज्बा लोगों में खुशी का माहौल बना जाता है। आइए सुनते हैं इसी पर एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म फोर से। इस फिल्म के गीत को गाया है के और सुचित्रा ने। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत से इसे सजाया है हारिस जयराज ने। आइए सुनें।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक जज्बे की, यानी जुनून की। इसके साथ एक और जज्बा है, चाहत का। चाहत वो जज्बा है जो दिलों को जोड़ता है, जिसमें चाहने वालों की खुशी भर जाती है, और ये लम्हात ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात होते हैं। आइए इसी पर सुनते हैं कि जिसको लिया है हमने, फिल्म आशिकी 2 से। इस फिल्म के गीत को गाया है पलक मुछाल और अरिजीत सिंह ने। गीतकार है जीत गंगुली। आइए सुनिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी 2 से लिया गया एक गीत। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में हम ना सिर्फ चैलेंजेस का सामना करें बल्कि उसे कंधा पेशानी से उसका सामना करें, बल्कि साथ ही एक मजबूत सोच अपनाएं ताकि ज़िंदगी में बहारें जारी रहे और ज़िंदगी खूबसूरत बनती रहे। आइए सुनते हैं गीत सुरीले गाते जा में आखिरी गीत फिल्म जैकपॉट से। इस फिल्म के गीत को गाया है श्रेया घोषाल ने। गीतकार है तुराज अजीम शिराजी और संगीत से इसे सजाया है शारिब तोशी ने। हाँ, ये सुने।

अभी आप सुन रहे थे गीत सुरीले गाते जा में, कुछ सुरीले गीत। प्रोग्राम नरंग के आखिर में आइए सुने बयामे शब, पेश कर रहे हैं सैदी।

0: हम अर्ज़ वफा भी कर न सके, कुछ कह न सके, कुछ सुन न सके, या हमने ज़बाँ ही खोली थी व आँख झुकी, शर्मा भी गए। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात सिर्फ जज्बात काफ़ी नहीं होते, बल्कि मुनासिब वक्त पर अपनी बात हिकमत, एतमाद और सच्चाई के साथ कहना भी ज़रूरी होता है। बहुत से रिश्ते इसीलिए भी अधूरे रह जाते हैं कि इंसान झिझक, खौफ या शर्म की वजह से अपने दिल की जायज़ बात भी नहीं कह पाता। दूसरी तरफ दिल में इखलास, ज़बान पर सच्चाई और किरदार में हया हो तो ताल्लुकात खुशगवार बनते हैं। अपनी जायज़ बात कहने का हौसला भी रखें और अपनी निगाहों में हया की रोशनी भी कायम रखें, क्योंकि कामयाब ज़िंदगी उन्हीं दोनों खूबियों के इम्तिजाज का नाम है।
1: पयाम है शब के साथ दोस्तों, आज का नैरन प्रोग्राम अब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। इस उम्मीद के साथ कल शब 9:30 पर हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बस में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ये आकाशवाणी हैदराबाद FM रेमो 101.9 MHz पर कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
3: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में

0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। एनडीडीबी मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन डीआईबीडी और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय एआई समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
2: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
1: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 km between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. The Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA between India and the United Kingdom became operational today. Simultaneously, the agreement on social security referred to as the Double Contribution Convention also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero duty access to 99% of Indian exports in the UK market, including those in textiles, leather, engineering, food processing, pharmaceuticals and MSME. On the first day of CETA, Indian goods worth $140 million were exported to the United Kingdom. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. The minister made this statement to the press after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels. He said that India and the EU have a natural affinity. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU FTA as fair, equitable and balanced, which is a win-win agreement for every sector in both the

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. श्रोताओं, आज चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्रिया एंड उदयन, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex gains 130 points. Nifty settles at 24,079. India-UK comprehensive economic and trade agreement comes into effect. And Cabinet approves Semicon 2.0 to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Also gives nod to national investment policy for Urea 2026.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 130 अंक बढ़ा. निफ्टी 24,079 पर बंद हुआ. भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार समझौता और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है. और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन 2.0 तथा यूरिया 2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी.
0: Listeners, before we move further into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब समय आ गया है कि हम जानें कि आज दिन के अंतराल में प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 130 अंक यानी लगभग 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ.

0: हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.3% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.7% की बढ़त देखी गई। इससे पहले बाजार बढ़त के साथ खुले और सत्र के पहले हिस्से में तेजी रही। वहीं दूसरी ओर दूसरे हिस्से में मुनाफा वसूली के कारण दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी। हालांकि बाजार कुछ समय के लिए घाटे में आ गए थे, लेकिन सूचकांकों ने जल्दी ही अपना रुख बदला और बचे हुए सत्र के दौरान उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करते रहे।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन द पॉजिटिव जोन टुडे। द सेंसेक्स रोज 130 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 0.2% अप टू क्लोज एट 77,185। द निफ्टी एडेड 26 पॉइंट्स और 0.1% टू सेटल एट 24,079। इन द ब्रॉडर मार्केट ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिड कैप 100 गेन्ड नियरली 0.3% एंड द स्मॉल कैप 100 इंडेक्स जम्प्ड almost 0.7%. Earlier markets opened on a positive note and traded higher during the first half of the session. However, both indices gave up their early gains in the latter half amid profit booking. Although the indices slipped briefly into negative territory, they soon recovered and traded in a choppy range for the remainder of the session.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एटर्नल 3% से अधिक, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.8% और एसबीआई के शेयरों में 1.5% की बढ़ोतरी हुई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में पावरग्रिड और लार्सन एंड टूब्रो में लगभग 1.7% और अधिक तथा टाटा स्टील के शेयरों में 1.5% से अधिक की गिरावट आई।
1: In sectoral indices on the BSE, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, capital goods jumped 1.3%, PSU banks rose over 0.9%, and hospitals as well as consumer durables added more than 0.7%. In contrast, utilities dropped nearly 1.3%, metal fell 1%, and IT lost over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,207 advanced, 2,081 companies declined and 154 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.97 पर कारोबार कर रहा था। उदयन, कल हमने देखा कि बाजार में गिरावट आई और आज हमने देखा कि बाजार में एक हल्का सा हम कह सकते हैं कि हरे दायरे में कारोबार करते हुए हमारे सूचकांक नजर आए। लेकिन हमने साथ में ये भी देखा कि फाइनेंशियल जो सेक्टर है, जो क्षेत्र है, उसने आज बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या कारण रहा होगा इसका?
2: देखिए, जब रिस्क ऑन थोड़ा पॉजिटिव मूड रहता है तो फाइनेंशियल्स नॉर्मली, क्योंकि हमारे जो सूचकांक है उसका एक बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है वो फाइनेंशियल्स का होता है, तो वो नेचुरली वहाँ उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट चला जाता है जो प्रोमिनेंट कंपनीज होती हैं। तो जब आपका स्लाइटली रिस्क ऑन बिहेवियर है, जब आपका पॉजिटिव सेंटिमेंट है या रिबाउंड कर रहे हैं, तो तब उसकी तरफ रुख जरूर होता है। बाकी जो मोर और लेस जो है, जो नंबर्स की उम्मीद हो रही है, बाकी जो चीजें हो रही हैं, इट्स मोर और लेस ऑन ट्रैक, तो दिक्कत वहां पे बिल्कुल नहीं है। जो फाइनेंशियल्स को लेके जो नॉर्मली कुछ चिंताएं होती है, उस टाइप की कोई चिंता खास नहीं है। जो टॉक्सिसिटी थी कई साल पहले एनपीएस वगैरह की, वो अब बहुत बेहतर टेरिटरी में है। क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, अब हाल ही में जो सीएनआरबी का अनाउंसमेंट हुआ, उससे वो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, पर मुझे लगता है ये जो है ये मोर टैक्टिकल है। शायद ये इसमें फंडामेंटल्स ढूंढने की जरूरत नहीं है।
1: Then, you know, we always know that, of course, we have small cap, mid cap, and large cap. And by and large cap they may move slowly, but they are more steady and more stable, and retail investors, as I said, balance your

0: emeralds in the world. Tanzanite, we are the sole manufacturer of cut and polished tanzanite across the world. So we are having more than 200 clusters of manufacturing. All these will be benefited with this agreement.
1: और अन्य खबरों में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकियों को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकॉन 2.0 को भी मंजूरी दी है। नई दिल्ली में हुए एक प्रेस वार्ता में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 1.0 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि यह योजना आर्थिक विकास में मदद करेगी, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी नेतृत्व स्थापित करेगी। मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना अगले 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
2: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसका आउटले 62,500 करोड़ रुपीस का है। 5 ईयर्स का ड्यूरेशन है। डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए हैं क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत से एक्सपोर्ट होने लगे हैं ऑलरेडी। इसमें करीब 39 लाख करोड़ रुपीज का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा और 60,000 डायरेक्ट जॉब्स नए क्रिएट होंगे।
1: मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 यानी एनआईपीयू 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य देश में गैस आधारित यूरिया बनाने वाली इकाइयां लगाने के लिए यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना है ताकि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। नई नीति में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए स्थिर और परिवर्तनशील लागत को अलग अलग करने के साथ कई और महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। उद्यन सेमीकॉन 2.0 उद्देश्य जो लेकर के भारत सरकार चल रही है वो वैश्विक सेमीकंडक्टर को मानचित्र पर लाने की एक परिकल्पना है। ये किस तरीके से फलीभूत होते हुए आप देखते हैं?
3: देखिए, अब जो सेमीकंडक्टर्स हैं, वो जो चिप्स हैं, वो हम हर चीज, तकरीबन हर चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो सक्षमता है, वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड चिप्स बनाने में आप सीधा तो नहीं जा सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे वो जो गैप है कटिंग एज और आपके बीच में, उसको कम करना है। तो आपने देखा होगा कि इन सरकार ने और दूसरे उद्योगों ने, कंपनियों ने एक प्लान बना रखा है कि कैसे वो गैप को धीरे धीरे करके कम करना है। तो ये उसका ही हिस्सा है जिसमें वो आप आगे बढ़ रहे हैं और आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं। सबसे ज्यादा सूक्ष्म जो चिप्स है वहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जो हमारे जो कटिंग एज और हमारे बीच में इतना बड़ा फासला जो है वो कम हो जाए, क्योंकि हर चीज के लिए आपको वेरी एडवांस चिप्स की जरूरत नहीं पड़ती। कई जगह में रेगुलर यूज के जो हैं वहां पे आप उसके लिए भी चाहिए होता है, उसके लिए भी आप अगर इंपोर्ट करें वहां पे रिस्ट्रिक्शन हो जाए। तो जो सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में बात हो रही है, तो वो आप देश में ही बने और वो आप विश्व के लिए बनाए, तो उसी का ही एक हिस्सा है, वो इसी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा ही है।
1: जी, आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने को कहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। यूनिट ने स्पष्ट किया कि भारत में क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। पीआईबी ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
4: Global crude oil prices extended gains today amid escalating tension in West Asia. Brent crude was trading over 0.3% up at $85.03 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.4% up at $79.66 per barrel when reports last came in. Brief comment, Udayan, on the rate of rise of oil.
3: Obviously, we don't.

0: like this. We import most of our oil from abroad. Mm-hmm. But I think from the market's point of view, the figure is 90. As long as it remains below 90, I think the markets and the general sentiment will be able to handle it. But the every time it's going to increase, you're going to see the first place is you're going to see an impact would be on the value of the rupee. That's where it starts. Then it will start. It impacts your equity or and other forex inflows. Mm-hmm. So, what we need to, if there is somebody who's watching this, what we need to hope for is that it doesn't cross the figure of 90, because it's got fiscal implications and other implications as well. So we would want it to be lower it gets, the better it is. But we don't stay in an ideal world, which we have realized. So, you know, we hope it doesn't go up too
1: much. Right. Fingers crossed. Yeah, absolutely. Yeah, yeah. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% down at 1,42,560 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.6% down at 2,22,200 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona mamuli badhat ke saath 1,42,328 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki sitambar anubandh wali chandi 0.3% ludhak kar 2,22,488 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. उद्यन जाते जाते, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए एक संक्षिप्त टिप्पणी में सोने और चांदी के भाव पर चाहूंगी.
0: देखिए, ये सोने की पॉपुलैरिटी बरकरार ही रहेगी जब तक आपके ये दो जो संघर्ष चल रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट आपके स्टॉक फाइनेंशियल एसेट्स पे होता रहता है. तो वो बट ये ख्याल रहे कि आप उसमें एक्सेस ना जाए. अगर 100 रुपए निवेश करें, 10 रुपए से ज्यादा ना सोने में हो और वहीं पे बरकरार रखें. तो अगर और ये नहीं कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है, बाकी ईटीएफ वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं.
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद उदयन कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए.
0: धन्यवाद.
1: वंस अगेन थैंक यू उदयन. एंड नाउ क्विक लुक एट द हेडलाइंस. वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन पॉजिटिव नोट. सेंसेक्स गेन्स 130 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 24,079. इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट एंड कैबिनेट अप्रूव सेमीकॉन 2.0 टू स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड manufacturing ecosystem. Also gives nod to national investment policy for Urea 2026. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। एक बार फिर मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज से आपने ये गीत सुना, ओपी नैयर का संगीत, कमर जलालाबादी का लिखा ये गीत। और आवाज आशा भोसले की।

तो दोस्तों राखी आ चुकी है निशिकंधा लेकर स्टूडियो में, छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दे दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुँच प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत टैक्स 2026 के दूसरे दिन राज्यों के नेतृत्व वाली वृद्धि, निवेश के अवसरों और वैश्विक बाजारों के साथ भारत की बढ़ती वस्त्र व्यापार साझेदारी पर बल दिया गया। इस सत्र में राज्य सरकारों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया ताकि विनिर्माण को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और देश के वस्त्र तथा परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार लाने के उपायों पर चर्चा की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

मधुमती फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। हिंदी फिल्मी गीत हमारे हर पल के सच्चे साथी हैं। खुशी का मौका हो तो ये मुस्कान बन जाते हैं और उदासी के लम्हों में दिल का सहारा। कभी बीते हुए दिनों की याद दिलाते हैं तो कभी आने वाले कल की उम्मीद जगाते हैं। हर एहसास, हर मौसम और हर रिश्ते के लिए जैसे कोई ना कोई गीत पहले से ही लिखा हुआ मिलता है। शायद यही वजह है कि हिंदी फिल्मी गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं।

आपकी कसम फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कई बार जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं घूमने फिरने का समय ही नहीं मिल पाता, ऐसे में हिंदी फिल्मी गीत ही हमें अपनी धुनों के सहारे हरी भरी वादियों, बर्फ से ढके पहाड़ों, बहती नदियों और सुहाने सफर की सैर करा लाते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है मानो हम भी उन खूबसूरत नज़ारों का हिस्सा बन गए हों। यही तो फिल्मी गीतों का जादू है, बिना कहीं जाए हमें दूर दूर की दुनिया की सैर करा देते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 15 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: तीन देवियां फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। कभी कभी तो यूं लगता है कि ये फिल्मी नगमे हमारी बेख्याली में भी हमारे साथ चलते रहते हैं। होंठ खामोश हों फिर भी दिल की धड़कनों के साथ कोई धुन अनायास ही गुनगुनाने लगती है। यही गीत हमारी तन्हाई के हमसफर, मुस्कुराहट के राजदार और यादों के सबसे खूबसूरत साथी बन जाते हैं।
1: आयो से की

कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। जिसे सच्चा प्रेम मिल गया और जो पूरे दिल से किसी का हो गया, उसके लिए यही दुनिया सबसे खूबसूरत हो जाती है। उसे दौलत, शोहरत या दुनिया की चकाचौंध से ज़्यादा अपने प्रिय का साथ अनमोल लगता है। प्रेम जीवन को एक नया अर्थ, नहीं नई खुशी और अपनापन दे देता है। मानो पूरी दुनिया उसी की हो गई हो।

तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। इस एक पंक्ति में ही प्रेम की गहराई समाई हुई है। जब दो लोग सचमुच एक दूसरे के हो जाते हैं तो उनकी खुशियां, उनके सपने, उनकी मंजिलें और उनकी उम्मीदें अलग नहीं रह जाती। सब कुछ एक ही रंग में रंग जाता है। यही कारण है कि ये गीत आज भी सुनने वालों के दिल को उसी आत्मीयता से छू जाता है जैसे इसने पहली बार छुआ होगा। गाइड फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

आराधना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में कल से पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से यही मानना रहा है कि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। राज्य की विमानन नीति इसी विचार पर आधारित है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मिश्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। मसौदा मतदाता सूची अब 13 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडुब्रु मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमेरिकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी सरकार

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

पुनर्मिलन फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया सी अर्जुन ने। कितने सुहाने हैं ये गीत, कभी चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं तो कभी अनकही यादों को धीरे से जगा देते हैं। कुछ गीत दिल को सुकून देते हैं, कुछ बीते लम्हों की खुशबू बनकर साथ चलते हैं। समय बदलता रहता है लेकिन अच्छे गीतों की मिठास कभी कम नहीं होती।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। प्रेम इंसान को जितनी खुशियां देता है उतना ही संवेदनशील भी बना देता है। जब दिल किसी से जुड़ जाता है तो दुनिया की बेरुखी, ताने और ठोकरें पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती हैं। शायद अगर दिल ने कभी मोहब्बत करा

रास्ता चुना ही ना होता तो जिंदगी इतनी कठिन भी ना लगती। लेकिन सच तो ये है कि दर्द का ये एहसास भी उसी दिल को नसीब होता है जिसने कभी सच्चे मन से किसी को चाहा हो।

बाबर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, समय, धैर्य और हर परिस्थिति में साथ निभाने से साबित होता है। इम्तिहान इसलिए नहीं कि किसी को मुश्किल में डाला जाए, बल्कि इसलिए कि रिश्ते की गहराई और दिल की सच्चाई सामने आ सके। मोहब्बत जब हर कसौटी पर खरी उतरती है, तभी वो उम्र भर का विश्वास बन जाती है।

0: बरसात की रात फिल्म का गाना आपने सुना, रफ़ी की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 28 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त

दिल ही तो है फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। गीतों की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो दिल की सबसे छोटी से छोटी और सबसे गहरी से गहरी बात भी कितनी सहजता से कह जाते हैं। जिन भावनाओं को हम कभी शब्दों में नहीं ढाल पाते, उन्हें कोई गीत कुछ ही पंक्तियों में बयान कर देता है। कभी मुस्कान बनकर, कभी याद बनकर, तो कभी अनकहे दर्द की आवाज बनकर।

आखिरी दाव फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। गीत हमारी भावनाओं को ऐसा स्वर दे देते हैं कि लगता है जैसे वो हमारे ही दिल की कहानी सुना रहे हों।

भरोसा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। कुछ रिश्ते समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन उनकी यादें दिल में इतनी गहराई से बसी होती हैं कि उन्हें मिटाने के लिए शायद एक नया दिल चाहिए। यही तो मोहब्बत की सबसे बड़ी विडंबना है। इंसान बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, मगर कुछ यादें उम्र भर दिल का हिस्सा बनी रहती हैं।

अनोखी अदा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 23 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बैजू बावरा फिल्म से आपने गाना सुना, रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। रहेगा मिलन हमारा तुम्हारा, जब तक धड़कनों में एहसास बाकी हैं तब तक इस साथ की खुशबू भी हमेशा बाकी रहेगी।

धूल का फूल फिल्म का गाना आपने सुना महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एन दत्ता ने। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2:10 पर सुनिए समाचार। समाचारों के बाद माफ कीजिएगा, ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए से अधिक के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत और ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिनों तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। मसौदा मतदाता सूची अब 13 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमेरिकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अर्जेंटीना पर 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। इस रोमांचक मुकाबले में विश्व कप के इतिहास में समृद्ध दो देश आमने सामने हैं, जो 19 जुलाई को फाइनल में स्पेन के खिलाफ जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एडजस्टन में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ।

चित चोर फिल्म का गाना आपने सुना यशुदास और हेमलता की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। रात सुहानी आपके सिरहाने बैठी है, जैसे कोई अपना चुपचाप आपके मन को सहला रहा हो। उसकी ठंडी हवाएं दिन भर की थकान समेटकर सुकून की चादर ओढ़ा रही है। इस शांत पल में बस अपने दिल की धड़कनों को सुनिए, क्योंकि कभी कभी खामोश रातें भी सबसे खूबसूरत बातें कह जाती हैं।

स्वामी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। अमित खन्ना ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। चांदनी की कोमल छुअन, ठंडी हवाओं की सरगोशियां और तारों की मध्यम चमक मिलकर एक ऐसा संसार रच देती हैं जहां दिन भर की सारी थकान और उलझने धीरे धीरे कहीं खो जाती हैं। ऐसे पलों में पुराने फिल्मी गीत अनायास ही याद आने लगते हैं, मानो हर धुन रात की खामोशी में खुलकर दिल की अनकही भावनाओं को आवाज दे रही हों।

0: मंजिल फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज़ में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:28 और ठीक 16 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

चंबल की कसम फिल्म से आपने गाना सुना, लता और रफ़ी की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। ये सोच कर कि तेरा इंतज़ार लाजिम है, ये सोच कर कि तेरा इंतज़ार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा।

उमराव जान फिल्म से आपने ये गजल सुनी आशा भोसले की आवाज में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। जिसकी जस्तजू में उम्र की राहें बिता दी, उसे तो हम पा ना सके, मगर उसकी तलाश ने हमें इतना जरूर सिखा दिया कि हर ख्वाहिश का मुकम्मल होना ही जिंदगी नहीं होता, कुछ अधूरी आरजुएं भी दिल को उम्र भर जिंदा रखती हैं।

वक्त हुआ है 2:46 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

रजनीगंधा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलील चौधरी ने। कई बार देखा है जब मन की सीमाएं टूटने लगती हैं तब शब्द खामोश हो जाते हैं और आंखें दिल की सारी कहानी कह देती हैं।

क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

बसियां रेट। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के

0: लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाते हैं। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहजेरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब उसका मुकाबला 19 जुलाई को स्पेन से होगा। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ, लेकिन एंथनी गार्डन ने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला गोल दागा। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया और लोटेरो मार्टिनेज ने 90वें मिनट के बाद मिले अतिरिक्त समय के दूसरे मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महबश फातिमा। Union Cabinet has approved Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500.

आकाशवाणी दिल्ली का एफ एम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 3:01 और 3:11 और 12 सेकेंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका अपना दोस्त फेरोज़। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी मोहब्बत किसी शोर से नहीं बल्कि एक खामोशी से शुरू होती है, एक मुस्कान, एक नज़र और फिर दिल धीरे धीरे किसी का आशियाना बन जाता है। आज की महफिल उसी बेपनाह एहसास के नाम, जब दिल बिना किसी शर्त के बस इतना कह उठता है ओ सनम तेरे हो गए हम। यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि उस इश्क की गवाही है जहां अपना वजूद भी किसी और की मुस्कान में नजर आने लगता है। तो आइए अपने दिल के दरवाजे को खोलिए, पुरानी यादों को हल्के से दस्तक देने की दीजिए और इस खूबसूरत नगमे के साथ मोहब्बत की उस रौनक को फिर से महसूस कीजिए। फिल्म आई मिलन की बेला से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में ये नगमा आपके लिए।

ओ सनम तेरे हो गए हम, बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म आई मिलन की बेला से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त। और अब हम आगे बढ़ेंगे एक और बेहद खूबसूरत नगमे की इस तरफ, जो आज का नगमा बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा है और यह हमें उस दौर में लेकर चल रहा है जब मोहब्बत लफ्ज़ों से कम और नज़रों से ज़्यादा बयां होती थी, जब एक फूल और एक बुलबुल की कहानी दिलों में इश्क की खुशबू बिखेर जाया करती थी। साल था 1965 का और पर्दे पर आई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जब जब फूल खिले। इस फिल्म में अपनी मासूम अदाओं से दिल जीत लिया नंदा ने और उनके साथ नजर आए थे सदाबहार अभिनेता शशि कपूर साहब। इस फिल्म का एक बेहद प्यारा गीत जिसे अपनी रूहानी आवाज़ से अमर बनाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने आज भी हर दिल को उसी शिद्दत से छू जाता है। तो आइए यादों की इस महफिल में शामिल होते हैं और सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमे को हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस गीत को लिखा है बहुत ही खूबसूरत गीतकार, बहुत ही प्यारे गीतकार आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और नंदा की।

एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे की तरफ, जिसने सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं सुनाई बल्कि बदलते वक्त और इंसानी रिश्तों की कश्मकश को भी बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया। ये वो दौर था जब मोहब्बत, इमोशन और सामाजिक रिश्तों की बातें जब होती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे फिल्मकार ने अपना दिल निकाल कर रख दिया है। ऐसी ही एक फिल्म थी नया दौर, और साल था 1957 का, यानी एक नया युग। नया दौर का मतलब नया युग की शुरुआत हो रही थी। महान फिल्मकार बी आर चोपड़ा के निर्देशन और निर्माण में बनी इस सामाजिक नाटक फिल्म की कहानी अख्तर मिर्जा ने लिखी थी। फिल्म में दिलीप कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी ने अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके साथ थे अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी, नाजिर हुसैन, मनमोहन, कृष्ण, लीला चटनीस, प्रतिमा देवी, डेजी ईरानी और राधा किशन जैसे उम्दा कलाकारों ने भी अपनी अदाकारी की गहरी छाप छोड़ी थी। इस फिल्म की कहानी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी थी और उसके नगमे भी इतने ही प्यारे थे। और उन्हीं नगमों में से एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। फिल्म नया दौर से आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तो आइए सुनते हैं वही नगमा, साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है ओपी नैयर साहब ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

हमेशा के लिए संगीत प्रेमियों के दिल में बस गया। आइए सुनते हैं वही बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म अनाड़ी से, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। महफिल सजी है आपके अपनी पसंदीदा हमराही की, जिसमें गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं, और हम भी और आप भी मिलकर चल रहे हैं हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर।

आपकी हमराही के साथ। जहां हर गीत अपने साथ यादों की महफिल, मोहब्बत की दास्तान और सुनहरे दौर की खुशबू लेकर आता है। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि एहसास बनकर दिल में उतर जाते हैं। उनकी मिठास, उनके अल्फाज और उनकी धुन बरसों बाद भी वैसी ही ताजगी का एहसास दिलाती हैं। आज का ये अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है। ये गीत है 1957 में आई एक बहुत ही मशहूर फिल्म प्यासा से, जिसने हिंदी सिनेमा को संवेदनशील कहानी और बेमिसाल संगीत का एक नया मुकाम दिया। इस खूबसूरत गीत को अपनी दिलकश आवाजों से सजाया है गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। दोनों की गायकी में ऐसी नज़ाकत और रवानगी है कि हर मिसरा सीधे दिल तक पहुंच जाता है। और जब बात संगीत की हो तो सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन का जिक्र कैसे छूट सकता है। सचिन देव बर्मन एक ऐसी शख्सियत जिसने धुनों को जिया है। उनकी धुनों में सादगी भी है, रूहानियत भी, और ऐसा जादू भी जो हर दौर में ताज़ा महसूस होता है। तो आइए कुछ पल के लिए रोज़मर्रा की भाग दौड़ के ज़रा फुर्सत चुराते हैं और इस खूबसूरत नगमे के साथ मोहब्बत की इस दुनिया में खो जाते हैं, जहाँ खोई आंखों में दिल की ज़बान कुछ अलग ही कह उठती है। हालांकि ये वक्त बहुत ही सुकून वाला है, रात की इस तन्हाई में बेहद खूबसूरत गीतों के साथ, बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए, खास तौर से इस नगमे को लेकर।

मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म प्यासा से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल है हमराही की, जहां हर गीत अपने साथ यादों की एक महफिल, सुरों की रौनक और जज्बात की एक खूबसूरत दास्तान लेकर आता है। कहते हैं मोहब्बत जितनी नाजुक होती है उसे संभालना भी उतना ही ज़रूरी होता है। रिश्तों की पाकिजगी, भरोसे की खुशबू और दिल की मासूमियत, इन्हीं एहसासात को बेहद खूबसूरती से बयां करता है हमारा अगला ये बहुत ही प्यारा नगमा। ये गीत है 1970 में रिलीज़ हुई एक यादगार फिल्म, जो एक बहुत ही खूबसूरत भी थी, सच्ची कहानियां कहती थी और हमारे जज्बात को भी झकझोर दी थी, और वो फिल्म थी मेरा नाम जोकर। इस फिल्म ने जिंदगी, मुस्कुराहट और दर्द को एक ही कैनवस पर बेहद संजीदगी से उकेरा है। गीत के दिलकश बोल लिखे हैं मशहूर शायर गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने, और इस नगमे को अपने सदाबहार संगीत से सजाया है हिंदी सिनेमा की महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की, जिनकी धुनें आज भी दिलों में उसी रवानी के साथ गूंजती है। और जब इन गीतों को, इन अल्फाज को आवाज़ मिली मुकेश साहब और आशा जी की, तो फिर क्या कहने। ये गीत एक ऐसे ही नगमा निगारी का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है, जिसे सुनकर आज भी सुनने वाले मुकेश साहब की आवाज़ को याद करने लगते हैं, उनको याद करने लगते हैं, उनकी शख्सियत को याद करने लगते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत नगमा, जिसमें प्यार की मासूमियत भी है, अपनापन भी, और रिश्तों की हिफाजत का बहुत ही प्यारा एहसास भी।

मुकेश साहब और लता जी की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए हमराही से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा अगला प्रोग्राम लेकर ठीक चार बजकर 10 मिनट पर अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय

0: राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। दिल्ली स्थित लाल किला परिसर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की चल रही तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किले परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिनों तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। सेना के केंद्रीय कमान ने बताया कि उसने दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाते हुए रात भर लगातार हमले किए और फिर दिन के उजाले में भी हमले जारी रहे। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब फाइनल में 19 जुलाई रविवार को उसका सामना स्पेन से होगा। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ, लेकिन एंथनी गार्डन ने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला गोल दागा। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया और लोटारो मार्टिनेज ने 90वें मिनट के बाद मिले अतिरिक्त समय के दूसरे मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महबश फातिमा। Union Cabinet has approved Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub. Mr. Vaishnav said the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The cabinet has also approved two elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has explained

पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का, और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज़। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में हम बात करेंगे ज़िंदगी के उन लम्हों की, उन यादों की और उन खूबसूरत पलों की जो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही मायने रखता है। अगर वो पल, अगर वो यादें ना हो तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी लगेगी। और इस अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में हम बात करते हैं ऐसे लम्हों की जहां हर गीत सिर्फ सुरों का सफ़र नहीं बल्कि ज़िंदगी को समझने का एक खूबसूरत पैगाम भी होता है। ज़िंदगी भी कितनी दिलचस्प है ना, कभी धूप कभी छांव, कभी आरजू तो कभी इंतज़ार, लेकिन हर सुबह हमें एक नया मौका देती है मुस्कुराने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। और रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, उन्हें सिर्फ निभाया नहीं जाता बल्कि भरोसे, अपनापन और मोहब्बत से सींचा जाता है। जब दो दिल एक दूसरे की खुशियों में अपनी खुशी तलाशने लगे तब ज़िंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है। और आज का हमारा अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है, मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि उम्मीदों का, विश्वास का और दिलों का होता है। यही तो ज़िंदगी की असली खूबसूरती है कि हर मुलाकात हमें कुछ नया सिखा जाती है। इस अनमोल नगमे को अपनी जादुई आवाज़ से अमर बनाया है किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों ने। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अरुणिमा की इस महफिल में आपके लिए अभिमान फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 5 सेकंड, और यह वक्त है आपके अपने

अभिमान फिल्म का ये नगमा था किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम अरुणिमा, जहां हर गीत सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब लगता है कि सब कुछ खामोश हो गया है, लेकिन यकीन मानिए हर खामोशी के बाद एक नई सदा जरूर सुनाई देती है। बस जरूरत है उम्मीद का दामन थामे रखने की। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हर मुश्किल के बाद फिर से मुस्कुराना सीख लेता है। रिश्ते, अपनापन और एक दूसरे का साथ, यही तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। कभी किसी अपने को पुकारने में देर मत कीजिए, और अगर कोई आपको पुकारे तो उस आवाज में छिपे एहसास को जरूर समझिएगा। आज का हमारा अगला ये नगमा बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत, जो दिलों को जोड़ने की एक ऐसी ही प्यारी दास्तान कहता है। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज से अमर बनाया है मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। गीत की खूबसूरत बोल लिख के हसरत जयपुरी साहब ने, जिनके अल्फाज सादगी में भी गहरी मोहब्बत का एहसास जगा देते हैं, और पर्दे पर इस गीत को जीवंत किया शमी कपूर साहब और कल्पना ने, जिनकी मासूम अदाकारी आज भी दिलों को छू जाती है। तो आइए आज अपने इस दिल के दरवाजे उम्मीद के लिए खोले रखें और किसी अपने को एक मुस्कान दीजिए, किसी मायूस चेहरे को हौसला दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची आवाज़ ही किसी की ज़िंदगी में एक नई रोशनी ले आती है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में फिल्म प्रोफेसर से।

आवाज देकर हमें ना बुलाओ। प्रोफेसर फिल्म का ये नगमा था रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि हर शाम के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किलें बड़ी होती हैं, लेकिन जो इंसान उम्मीद का दिया जलाए रखता है उसकी मंजिल उससे ज़्यादा दूर नहीं होती। कभी कभी हम अपने सपनों को बहुत दूर समझ बैठते हैं, मगर असल में फासले बाहर नहीं, हमारे ख्यालों में होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। जब दिल में उम्मीद, नज़रों में भरोसा और कदमों में हौसला हो तो हर सफ़र खूबसूरत बन जाता है। और आज का हमारा ये अगला बहुत ही प्यारा नगमा भी कुछ ऐसे ही एहसासात को छूता है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये गीत 1971 की बहुत ही खूबसूरत फिल्म आनंद से है। गीत के संवेदनशील बोल लिखे हैं योगेश साहब ने और इसको दिल को छू लेने वाले संगीत से सजाया है सलील चौधरी साहब ने। और जब इस नगमे को अपनी दर्द भरी लेकिन उम्मीद से भरी आवाज़ दी मुकेश ने, तो ये गीत हर उस दिल की आवाज़ बन गया जिसने कभी किसी बेहतर कल का ख्वाब देखा हो। तो आइए आज एक छोटा सा अहद करें, बीती बातों की मायूसी को पीछे छोड़ें, आज की मुस्कान को अपनाएं और अपने आने वाले कल का इस्तकबाल करें। यकीन के साथ करें, क्योंकि ज़िंदगी की असली खूबसूरती मंजिल में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए सफ़र को तय करने में है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:33 और 45 सेकेंड और अरुणिमा की इस महफिल में बातें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें आपके प्यार आपकी मोहब्बत की। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी एक लंबा सफर है, इस सफर में कुछ लोग मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ लम्हे मुस्कान दे जाते हैं तो कुछ हमें मजबूत बनना सिखा जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर गुजरता हुआ पल हमें आगे बढ़ने की वजह देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, पीछे रुकने की नहीं। अक्सर हम बीती हुई बातों को लेकर अफसोस करते रहते हैं, मगर ज़िंदगी का असली फलसफा यही है कि जो बीत गया उससे सीखिए और जो आगे आने वाला है उसका इस्तकबाल पूरे यकीन और मुस्कान के साथ कीजिए, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया भरी पड़ी है और उम्मीद से ही सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। ज़िंदगी की किताब में एक नया और ख़ूबसूरत सफ़ा ज़रूर जोड़ा करें, प्यार का, मोहब्बत का, खूबसूरती का। इन्हीं जज्बात को बेहद खूबसूरती से बयां करता है हमारा अगला ये बहुत ही प्यारा नगमा, जिसके बोल हैं, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। ये गीत फिल्म आपकी कसम का है, इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही सुंदर संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन साहब ने। आवाज़ है किशोर कुमार साहब की।

जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। बेहद खूबसूरत ये नगमा था किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में, फिल्म आपकी कसम से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में, और इस महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फिरोज। जिंदगी कभी इम्तिहान लेती है तो कभी मुस्कुराने की वजह भी देती है। हर मुश्किल अपने साथ एक नई सीख और हर आजमाइश एक नई ताकत लेकर आती है। आज का हमारा अगला ये नगमा हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी में शिकवा नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर मोड़ पर कोई ना कोई हिकमत ज़रूर छुपी होती है। फिल्म मासूम का ये बेहद खूबसूरत नगमा तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, जिसे लिखा है गुलजार साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है आर डी बर्मन साहब ने। उनका संगीत दिल को छू लेने वाला संगीत और अनूप घोषाल की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में ये नगमा, तो आइए बीती बातों को मुस्कुरा कर स्वीकार करें, आज को दिल से जिए और आने वाले कल का इस्तकबाल हंसते हुए मुस्कुराते हुए करें इस नगमे की तरह।

तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। बेहद खूबसूरत ये नगमा मासूम फिल्म से, आवाज़ थी अनूप घोषाल की। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। वक्त हो चुका है ठीक 4:49 और 49 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की, जिसमें हम बातें कर रहे हैं जिंदगी से जुड़ी हुई। और जिंदगी में उन तमाम मुश्किलात के बाद आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं उसकी। कहते हैं वक्त चेहरों को बदल सकता है, लेकिन इंसान को नहीं, इंसान की खूबसूरती को नहीं। इंसान की रूह की खूबसूरती उसके अच्छे कर्म और मुस्कुराहट से पहचानी जाती है। जिंदगी में गुजरा हुआ कल लौट कर नहीं आता, मगर हर नया दिन हमें खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका जरूर देता है। इसलिए अफसोस में नहीं, बल्कि उम्मीद और हौसले के साथ आगे बढ़ने, इन्हीं गहरे एहसासात को बयां करता हुआ अगला एक बहुत ही प्यारा नगमा है, एक बहुत ही प्यारा कलाम है डैडी फिल्म का, जो सीधे दिल को छू लेता है। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, गुजरा हुआ दौर जैसे कि मैंने पहले कहा कि कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उससे सीख कर जिंदगी को आगे जरूर बढ़ाई जा सकती है। इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं सूरज सनीम ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है राजेश रोशन साहब ने, और अपनी मखमली आवाज से इसे अमर बनाया है हम सबके प्यारे, हम सबके चहेते तलत अजीज साहब ने। तो आइए, आईने में सिर्फ चेहरा नहीं, अपने

जज्बे और अपने सपनों को भी देखिए, क्योंकि असली खूबसूरती वही है जो दिल में बसती है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता।

आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। बेहद खूबसूरत और बहुत ही जज्बाती ये नगमा था फिल्म डैडी से। आवाज़ थी तलत अजीज साहब की। तो दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, अपने पैगामात के ज़रिए, अपने संदेशों के ज़रिए। तरीका बहुत ही आसान है, आपको हमें मेल करना है, और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldeirdaily@gmail.com fmgoldeirdaily@gmail.com। तो हमें आपके पैगामात, आपके संदेश, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज़ को अब दीजिए इजाज़त आज की अरुणिमा को यहीं पर समाप्त करने की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा लेकर बेहद खूबसूरत प्रोग्राम भोर सुहानी ठीक 5:10 पर। तब तक के लिए मुझे अब इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में, और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत।

0: देगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई, जो अधिक संरचित और व्यापक साझेदारी के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ होराइजन यूरोप कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बैठक के दौरान वे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना मानकों पर पहला नवाचार केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। सेना के केंद्रीय कमान ने बताया कि उसने दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाते हुए रात भर लगातार हमले किए और फिर दिन के उजाले में भी हमले जारी रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। मध्य प्रदेश में पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से यही मानना रहा है कि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। राज्य की विमानन नीति इसी विचार पर आधारित है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां 19 जुलाई को इसका सामना स्पेन से होगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehbash Fatima. Union Cabinet has approved Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub. Mr. Vaishnav said, the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The cabinet has also approved two elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has expressed confidence that the India-European Union Trade and Technology Council meeting will carry forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU Free Trade Agreement, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Speaking to media yesterday after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the European Union share a natural

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक सुबह के 5:11 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। आज की इस नई सुबह में हम इस उम्मीद के साथ आज के इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे कि आज का दिन हमारे लिए बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा हो।

उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला वक्त हमारे लिए हमेशा खुशियां लेकर के आए और हर कदम हम एक सही रास्ते पर सही तरीके से बढ़ाएं। ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है, बहुत प्यारी है और उस ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से जिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती है और ये हमें बार बार नहीं मिलती। हाँ, ये ज़रूर है कि हर नया दिन हमें एक नए रोशनी, एक नए सबक के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आज हम भी एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं और एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका भोर सुहानी में, जहां हर नई सुबह अपने साथ उम्मीद की एक नई किरण और जिंदगी का एक नया पैगाम लेकर आती है। दोस्तों, सूरज कभी एक ही पल में नहीं निकलता, वो भी धीरे धीरे आसमान को रोशन करता है और हमारे चारों तरफ उजाला फैलाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी कामयाबी और खुशियाँ वक्त के साथ दस्तक देती हैं, इसलिए सब्र रखिए, यकीन बनाए रखिए और हर नए दिन का इस्तकबाल बहुत ही खूबसूरती के साथ मुस्कुरा कर कीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके इर्द गिर्द खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हम भी इसी उम्मीद के साथ आज के इस नए दिन का आगाज़ करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में देखिए ये परिंदे किस तरह से चहचहाने लगे हैं, क्योंकि वो भी नए दिन का आगाज़ खुशियों के साथ मुस्कुराकर करना जानते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी, जहां हर सुबह अपने साथ उम्मीद की एक नई रोशनी और जिंदगी का एक नया पैगाम लेकर आती है। दोस्तों, जिंदगी एक बहती हुई धारा की तरह है। इसमें कभी शांत लहरें होती हैं तो कभी तेज बहाव, लेकिन जो हर मोड़ को मुस्कुरा कर कबूल कर लेता है वही मंजिल तक पहुँचता है। बीते हुए कल की फिक्र छोड़िए और आज की सुबह का इस्तकबाल पूरे हौसले और यकीन के साथ कीजिए। इन्हीं खूबसूरत ख्यालात को अपने सुरों में डालता है अगला ये बेहद खूबसूरत नगमा। इसका नाम है जीवनधारा। फिल्म जीवनधारा का ये गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में

तो आइए इस नई सुबह का एक बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तकबाल करें, एक संकल्प लें, हर दिन कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और हर पल को दिल से जिएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम भी इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:30 और 15 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, जहाँ पर नई सुबह उम्मीद की रोशनी और जिंदगी की नई उम्मीद लेकर आती है। और भोर सुहानी में बात हम आने वाले वक्त की, आने वाले मुश्किलात की, उसे किस तरीके से डटकर मुकाबला करें, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उसकी बातें करते हैं। दोस्तों कहते हैं जैसे एक छोटा सा दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही एक सकारात्मक सोच जीवन को रोशन कर देती है। मायूसी चाहे कितनी भी गहरी हो, हौसलों की एक किरण, हौसले की एक शमा नई राह दिखा देती है। इसलिए हर सुबह अपने दिल में विश्वास की जीवन ज्योति को जरूर जलाएं और मुस्कुरा कर नए दिन का इस्तकबाल करें, क्योंकि ये नया दिन हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हर गहरी अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर होती है, एक रोशन सुबह ज़रूर होती है जो हमारे ज़िंदगी में उजाला लेकर आती है। इसलिए कहते हैं मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हर भोर हमें ये याद दिलाती है कि रोशनी हमेशा अंधेरे से ज़्यादा ताकतवर होती है।